मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि तदनुसार 19 जून सन 2026 है। इस वक्त सवेरे के 5:56 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, सवेरे के 6 बजने को है। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में

94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील

0: सकती है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हो चुके हैं और ये समय होता है कार्यक्रम भक्ति संगीत वंदना का। तो चलिए सुनते हैं वंदना।

भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम होता हो तो समझ लेना उसकी कृपा है। भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना में परवीन के द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आइए करते हैं वंदना संगीत की, वंदना भक्ति संगीत की शुरुआत हवेली संगीत के साथ।

माँ भगवती हर स्थान पर तेरे नाम का उजियारा है, तेरे नाम की छैया में मैंने पाया प्यार तुम्हारा है। संतोषी सिखाती है तू हर काश, तूने मेरा संवारा है। तेरे बिन माँ संतोषी मेरा इस जग में कहाँ गुजारा है। जय जय माँ संतोषी, मेरे लब पर तेरा ही जयकारा है।

आकाशवाणी उदयपुर से कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं। मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, दो पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में, छोटी सी है जिंदगी, बस हर किसी से प्यार करो।

भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना दिव्यांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। नहीं भक्ति बोलने सुनने से होती, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। नहीं भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, ये एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आता है। भक्ति संगीत का एक

आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं। अब हम सुनवाते हैं ये अंतिम रचना और इसी के साथ दीजिए अनुमति परवीन को नमस्कार।

वंदना, अभी आपने सुना। चलिए श्रोताओं, देते हैं आज के हमारे प्रसारित होने वाले आकर्षणों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में। सवेरे 6:40 से आप सुन पाएंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ, पाठ संख्या 114। 6:50 से आप सुनेंगे खेती में आज। उसके बाद सवेरे 7 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। 7:45 पर आप सुनेंगे गांधी दर्शन एपिसोड 11। श्रोताओं, आपको बता दें आकाशवाणी उदयपुर दोनों चैनल प्रसारित करेगा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। जी हाँ, सुनना न भूलिएगा। मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनल्स पर एक साथ सवेरे ठीक 8:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इस कार्यक्रम की प्रायोजकता रहेगी एनसीआरटी की। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आपको जुड़ना होगा 9:30 से। सवेरे 10:00 से प्रोग्राम होगा फिल्म संगीत का, राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम, जिसका समय होगा सवेरे 11 से। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे सवेरे 11:30 से। लुत्फ लेना है फिल्म संगीत का तो आपको जुड़ना होगा ठीक 12 से। दोपहर 1:05 समय होगा महिलाओं की कार्यक्रम महिला जगत।

का। दिन में 1:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। कृषि जगत कार्यक्रम, जी हाँ, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 2:30 से। किसान भाइयों का ये है दैनिक कार्यक्रम।

शाम 5:10 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 के आयोजन का सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी उदयपुर से। छह बजकर 5 मिनट से फिर से आनंद लीजिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 6:30 से जुड़ेंगे जयपुर केंद्र, जहां से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी। 6:45 से राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। संध्या 7 से कार्यक्रम होगा खेती और घर का। तो श्रोताओं, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी उदयपुर के साथ, क्योंकि हमारे पास हैं अभी बहुत सारे आकर्षण आपके लिए।

ये थी जानकारी आज के प्रसारित होने वाले आकर्षणों की। 6:40 हो रहे हैं, हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं और ये समय होता है रामचरितमानस गान पाठ का। तो आइए सुनवाते हैं आपको रामचरितमानस गान पाठ 1:14।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान पाठ। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:50 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम खेती में आज का।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहना ने नानू बहिरो घणो घणो राम राम सा। देखो कार्यक्रम में आपने जानकारी दा कि किसान भाई अबाणु अने टाइम पे अपनी खेतीबाड़ी में कई कई काम कर सके है। किसान भाई देखो रबी री फसल री कटाई भई चुकी और अबे जो है खरीफ री फसल री देखो वावणी री तैयारी किसान भाई कर रहा है। अबाणु अने टाइम पे किसान भाई जो है फसल अवशेष प्रबंधन करने अपनी मिट्टी ने जो है वह उर्वर बनाई सके। किसान भाई बहन जाने कि फसल कटाई रे कड़े देखो अनाज तो आप सुरक्षित कर ली दो है, लेकिन वंडा जो अवशेष देखो अपने खेत में है वना ने देखो अगर आप जलाई दा तो वह अपनी गलती है, क्योंकि फसल अवशेष और पेड़ री सूखिया पत्तिया जलावाऊ देखो वातावरण में हानिकारक गैस री मात्रा बढ़ जावे, जणू कि मनुष्य पशु पक्षी रे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अतरोई ने अपने फसलारे उत्पादन में भी कदी कदी देखो मिट्टी री उपजाऊ शक्ति रो हास भी वे और मिट्टी में तापमान में वृद्धि और ऊपरी सतह शक्त व्यवहार के कारण समय में भूमि बंजर व्यवहार खतरों भी पैदा वे वे है। फसल अवशेष एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है न कि एक अवशिष्ट पदार्थ। कृषि अवशेष रो उचित निस्तारण करने देखो आप मिट्टी री उर्वरा शक्ति ने बढ़ाई सका हाँ। फसल अवशेष में पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में रहवे है, जणा ने पुनः अगर आप जमीन में मिले दा तो भूमि री उर्वरा शक्ति जो है वह देखो काफ़ी हद तक बढ़ सके। कृषि अवशेष ने जमीन में मिलावाऊ सूक्ष्म जीवा में बढ़ोतरी वे और अणु प्राकृतिक चक्र जो है वो भी सुचारू रूप चालतो रहे। भूमि कटाव और जल कटाव प्रतिरोधक क्षमता और भूमि री बाहरी वातावरण ने झेलवारी शक्ति बढ़े और भूमि में आवश्यक पोषक तत्व जो है जिस तरह के फास्फोरस कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये भी देखो वन में मिले हैं और वणु पौधारी जो बढ़वार वे वह अच्छी वे खेतीबाड़ी में काम कर रहे हैं तो वणा ने चाहे कि देखो अपना जो फसल अवशेष है वणा ने जलावे नहीं, बल्कि अब गहरी जुताई करने वणा ने अपनी मिट्टी में ज मिले दा ताकि यदि मानसून

का वेगा तो वे अपनी मिट्टी में मिलने अपनी भूमि ने उपजाऊ बनाएगा। अणी महीना में देखो अपने मक्का री वावणी अगर बटे देखो अपने करनी है। मक्का री वावणी रे पहला देखो अगर आप ध्यान रखवा वाली बात करा तो मक्का में देखो आप सब जाना है अच्छी उत्पादन क्षमता और खाद्यान्न वाली फसलों में एक है। आजकल आप सब जाना कि मक्का रा अलग अलग उपयोग वे। मक्का ने देखो पॉपकॉर्न स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न रे रूप में भी देखो जानियो जावे। मक्का री खेती सब तरीकाओं देखो मिट्टी जो है वन में की दी जा सके। उचित जल निकास युक्त बलुई मटियार और दोमट मिट्टी जन में वायु रो संचार और पानी री निकास रो उत्तम व्यवस्था वे। जन रो पीएच मान 6.5 उलैन 7.5 वे वणी मिट्टी में देखो आप मक्का री खेती कर सका। अबारा आनी टाइम पे देखो खेत री आप तैयारी कर रहे हाँ तो अणी टाइम पे अगर आप खरीफ की फसल वाते देखो एक गहरी जुताई मिट्टी पलटवा वाला हलू करने अपने खेत में देखो नमी राखवा रे वाते जुताई रे केड़े पाटो लगानो लाभदायक रहे। जुताई करवाओ कही वेगा कि अपनी मिट्टी जो है वह भुरभुरी बन जाएगा। जटे बात करा आप खरीफ री बुवाई में तो अबार देखो मक्का रे वाते देखो उपयुक्त समय है। जटे बीज री बात करा तो 8 से 10 किलोग्राम बीज जो है प्रति एकड़ वावणी कर सका और कतारू कतारी दूरी री जब बात करा तो 60 से 75 सेंटीमीटर प्रति कतार और पौधाऊँ पौधा री दूरी री बात करा तो 20 से 25 सेंटीमीटर तक आपा राख सका। बीजा ने बीज और मृदा जनित रोगा और कीट व्याधाओं बचावा रे बात है TLB BLSB और MLB रोग और कीट री रोकथाम बात है 1:1 में बावस्टीन और कैप्टन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज री दर प्रयोग कर सका। दीमक और प्ररोह मक्खी री रोकथाम रे बात है इमिडाक्लोपिड या पचे प्रिपोनोल 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या 4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज री दर उपचारित करनो चाहे। जल भराव वेवा वाला नुकसान बचाव रे वाते फसला रे मेड़ा पर बोनो चाहे और प्लांटर उपयोग करने एक ही बार में बीज और उर्वरक ने उचित स्थान पर डालवाऊ अपने मदद मिले है। चारा री वावणी वाते सीड ड्रिल रो उपयोग करनो चाहे और मक्का री फसल पहला किसान भाई अणा सब वाता रो ध्यान रखेगा तो अणी टाइम पे देखो अगर जो मक्का री वावणी करेगा तो वणा ने हऊ लाभ वेगा सा। जटे अररी बात करा तो जटे सिंचाई रे वाते पानी री उपलब्धता नहीं वे तो वटे वर्का पहला अररी आपने वावणी करनी है। सिंचित दशा में अररी बुवाई अणु पहला भी कर सका। अररी वावणी रे वाते प्रभात व UPSS 120 शीघ्र पाकवा वाली तथा बहार नरेंद्र अरहर 1 व मालवीय अरहर 15 देरु पाकवा वाली अच्छी प्रजाति है। अररी वावणी रे वाते प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में 12-15 किलोग्राम बीज पर्याप्त वे। अरहर ने राइजोबियम कल्चर उपचारित करने 60-75 और 15-20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसान भाई अणी टेम पे वही सके है। जटे चारा रे बात बात करा तो किसान भाई जो अबार अणी मीना में ज्वार है लोबिया है और बहु कटाई वाली चेरी री वावणी कर सके। वर्कानी व्यवहारी दशा में पले वो देने भी किसान भाई वावणी कर सके। जटे किसान भाई देखो अपने खेती बाड़ी में अनाज तो वावे ही है वंडे लारे लारे अगर सब्जियां री बात करा तो अणी टाइम पे बैंगन मरचा अगेती फूल गोभी री पौध जो है वावी लगे जा सके। वटेज पहलों बोई गई बैंगन टमाटर और मरचा री फसल में सिंचाई और आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई रो काम भी अणी टाइम किसान भाई कर सके। अंडे अलावा यो टाइम जो है भिंडी री फसल वावणी रे वाते भी उपयुक्त है। अंडे वाते भिंडी री परभनी क्रांति आजाद भिंडी अर्का अनामिका वर्षा उपहार BRO 5 VRO 6 IIVR 10 किस्मारो चयन कर सके और अणी तरीका लौकी खीरा चिकनी तोरी आरा तोरी करेला और टिंडा री वावणी भी किसान भाई अगर अणी टाइम पे करे तो मानसून री टाइम पे वणा ने हऊ फसल मल सके। अणी टाइम पे किसान भाई जो है देखो मेड़बंदी भी कर सके क्योंकि मेड़बंदी आप जाना कि यदि खेत में पानी देवाऊ आसानी वे और जब बरसात वे तो खेत में जो पानी भर जाए वणु भी खेत री नमी बढ़े और जमीन रे नीचे पानी रो स्तर भी बढ़े है। अंड बात है अणी टाइम पे किसान भाई जो है मेड़बंदी कर सके और जटे मेड़बंदी री बात करा तो अणी में देखो फलदार पौधा में अनार है आंवला है नींबू है बेर है करौंदा है शहतूत है लेसुआ है बेलपत्र है अमरूद है जामुन है आम है अणा ने देखो लगाई सके है। छायादार पौधा री जटे बात करा तो बड़ पीपल नीम सेंजना सीरस करंज और महुआ लगाई सके। चारा वाला पौधा री जटे आप बात की दी तो खेजड़ी है अरबू है नीम है पीपल है सेंजना है अणा ने भी लगे ने किसान भाई जो है मेड़बंदी अपने खेत रे चारों मेर कर सके है। तो किसान भाई देखो अबाणु अणी टेम खेती बाड़ी में आप अणा वातारो ध्यान रखोगा तो अपनी फसल ने अच्छी तरह ले सकोगा। और देखो भाई घड़ी आड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टेम भी रो
तो आज्ञा दो नानू भाई ने, राम।

0: खेती में आज कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सवेरे के 7 बजने वाले हैं, लेकिन हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे में एक ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आकाशवाणी उदयपुर से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मैं हूँ आपकी दोस्त परवीन। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को और सुनते हैं पहला नगमा फिल्म परदेश से, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा गुड्डू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना।

0: रिलैक्स।
1: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
4: यात्री तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: तेरी वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
11: श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे का। आप आकाशवाणी उदयपुर से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं ये हमारा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला नगमा फिल्म क्यों की से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में फिल्म क्या कहना से ये गीत, आवाजें हल्का याग्निक और कुमार सानू की।

श्रोताओं, कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और अब समय हो गया है कि इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। लेकिन समाप्ति से पहले एक गीत आपके लिए, और फिल्म पापा कहते हैं, आवाज है उदित नारायण की। तो आइए सुनते हैं ये गीत, और इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। परवीन को नमस्कार।

श्रोताओं, सदाबहार नगमे अभी आपने सुना, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम गांधी दर्शन, गांधी जी की आत्मकथा पर आधारित कुछ अंश।

कांति दर्शन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से संस्मरण। आज का संस्मरण विलायत की तैयारी। देश की और वैसे ही गांधी कुटुंब की भी गरीबी का यह हाल था कि अहमदाबाद और बंबई ये तो परीक्षा केंद्र होने पर उस स्थिति का काठियावाड़ी नजदीक और सस्ते अहमदाबाद को पसंद करता। मैंने भी यही किया। राजकोट से अहमदाबाद का अकेले किया हुआ यह मेरा पहला सफर था। बड़ों की इच्छा थी कि मैं पास होकर कॉलेज में जाकर आगे पढूं। कॉलेज बंबई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम था, इसलिए वहां के श्यामलदास कॉलेज में भर्ती होना निश्चित हुआ। वहां मैं कुछ समझ न पाता था, सब कुछ कठिन लगता था। अध्यापकों के व्याख्यानों में न रस आता न वह समझ में आते थे। इसमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी कच्चाई का ही था। उस समय श्यामलदास कॉलेज के अध्यापक तो प्रथम श्रेणी के समझे जाते थे। पहला सत्र पूरा करके घर आया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान व्यवहार कुशल ब्राह्मण मावजी दवे थे। उन्होंने पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी हमारे साथ अपना संबंध बनाए रखा। वह इस छुट्टी में हमारे घर आए। माताजी और बड़े भाई से बातों के सिलसिले में मेरी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की।

मैं श्यामलदास कॉलेज में पढ़ रहा हूं। यह सुनकर बोले, जमाना बदल गया, तुम लोगों को इसे विलायत भेजना चाहिए, वहां पढ़ाई आसान है, 3 बरस में पढ़कर वापस आ जाएगा, खर्च भी 4-5 हजार से अधिक न लगेगा। देखो ना, वह जो नया बैरिस्टर आया है कैसी शान से रहता है, वह दीवानगिरी चाहे तो आज पा सकता है। मेरी सलाह तो यह है कि मोहनदास को तुम लोग इसी साल विलायत भेज दो। केवल राम की विलायत में बहुत से दोस्त हैं, उनके नाम वह सिफारशी चिट्ठियां लिख देगा, फिर इसे वहां कोई कठिनाई न होगी। जोशी जी ने इस भाव से मेरी ओर देखकर पूछा, मानो उनकी सलाह मान ली जाने के संबंध में उन्हें कोई शंका ही न हो। क्यों, तुम्हें विलायत जाना पसंद है या यहीं पढ़ते रहना? मुझे जो बाता सो मैंने बताया। मैं कॉलेज की कठिनाइयों से डरा हुआ तो था ही, मैंने कहा मुझे विलायत भेजा जाए तो ही बहुत अच्छा, कॉलेज में झटपट पास होता जाऊं ऐसा तो नहीं दिखाई देता, पर क्या मैं डॉक्टरी पढ़ने नहीं भेजा जा सकता? मेरे भाई बीच में ही बोल उठे, यह तो पिताजी को नहीं रुचता था, जब कभी तुम्हारी बातें करते तो कहा करते थे कि हम वैष्णवों को हाड़ मांस नोचने का काम नहीं करना चाहिए। पिताजी का विचार तो तुम्हें वकील बनाने का था। जोशी जी ने भी इसका समर्थन किया। मुझे गांधी जी की तरह डॉक्टरी पेशे से नफरत नहीं है, हमारे शास्त्रों ने इस पेशे को बुरा नहीं बताया है, पर डॉक्टर बनकर तुम दीवान नहीं बन सकोगे। मुझे तो तुम्हारे लिए दीवानगिरी या इससे भी बड़ा पद चाहिए, तभी तुम्हारे इतने बड़े कुटुंब का निर्वाह हो सकेगा। जमाना दिन दिन बदलता और कठिन होता जा रहा है, अतः बुद्धिमानी बैरिस्टर होने में ही है। माताजी की ओर फिरकर बोले, आज तो मैं जा रहा हूं, मेरी बातों पर विचार करके देखिएगा, दोबारा आने पर तैयारी का समाचार सुनने की आशा रखता हूं, कुछ अड़चन हो तब मुझे कहिएगा। जोशी जी चले गए, मैं हवाई किला बनाने में लग गया। बड़े भाई उलझन में पड़े, पैसे का क्या प्रबंध हो, फिर मुझ जैसे नवयुवक को इतनी दूर कैसे भेजा जाए। माताजी को कुछ न सूझा, उन्हें वियोग की बात ही न रुचि, पर पहले तो उन्होंने यही कहा, अपने कुटुंब में तो अब चाचा जी ही बड़े हैं, अतः सबसे पहले तो उनसे पूछना चाहिए, वह अनुमति दे तो फिर सोचा जाएगा। बड़े भाई को दूसरी बात सूझी, पोरबंदर राज्य पर अपना हक है, लली साहब वहां एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारे कुटुंब के बारे में उनका ख्याल अच्छा है, चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है, वह शायद राज्य की ओर से तुम्हें थोड़ी बहुत मदद भी दे दे। मुझे यह सारी बातें पसंद आई, मैं पोरबंदर जाने को तैयार हो गया। उस समय रेल नहीं थी, बैलगाड़ी से जाना था, 5 दिन का रास्ता था। पोरबंदर पहुंचा, चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया, सब बातें सुनाई, उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं कि विलायत जाकर हम धर्म बचा सकते हैं या नहीं, जो सब बातें सुनता हूं उनसे तो मुझे शंका ही होती है। देखो ना, बड़े बैरिस्टरों से जब मुझे मिलने का काम पड़ता है तब उनके और साहबों के रहन सहन में कोई फर्क नहीं पाता, पर मैं तुम्हारे साहस में विघ्न डालना नहीं चाहता, मैं तो कुछ ही दिनों में यात्रार्थ जाने वाला हूं, दुनिया में मुझे अधिक दिन रहना भी नहीं है। किनारे पर पहुंचा हुआ आदमी तुम्हें विलायत जाने की, समुद्र पार करने की इजाजत कैसे दे? पर मैं बाधक न बनूंगा, असली इजाजत तो तुम्हारी मां की है, उनकी अनुमति मिल जाए तो तुम खुशी से जाओ, कह देना कि मैं तुम्हें रोकता नहीं, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हें प्राप्त ही है। मैंने कहा, इससे अधिक की आशा मैं आपसे रख नहीं सकता, मुझे अब मां को राजी करना है, पर लेली साहब के लिए सिफारशी खत तो देंगे ना? चाचा जी बोले, यह मुझसे कैसे हो सकता है, पर साहब भले आदमी है, तुम पत्र लिखो।

0: कुटुंब का परिचय देने पर वह अवश्य तुम्हें मिलने का समय देंगे और उन्हें बात जच गई तो मदद भी करेंगे। मैंने लली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने बंगले पर मिलने को बुलाया। बंगले की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही साहब मुझे मिले और तुम पिए हो लो फिर मुझे मिलना, अभी कोई मदद नहीं दी जा सकती, इतना ही कहकर ऊपर चले गए। मैं खूब तैयारी करके बहु तेरे वाक्य रट कर गया था, झुककर दोनों हाथों से सलाम किया था, पर मेरी सारी मेहनत अकारथ गई। मेरी नजर स्त्री के गहनों पर गई। बड़े भाई पर भी मुझे अपार श्रद्धा थी, उनकी उदारता की सीमा न थी, उनका प्रेम पिता के तुल्य था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ, राजकोट आकर सारी कथा सुना दी, जोशी जी से मशवरा किया, उन्होंने कर्ज करके भी मेरे बेचने की सलाह दी। मैंने अपनी स्त्री के हिस्से के जेवर बेच डालने की बात सामने रखी, उनके 2-3 हजार रुपए से अधिक नहीं उठ सकते थे। भाई ने जैसे भी हो रुपए जुटा देने का बीड़ा उठाया। माता को तसल्ली कैसे हो, उसने सब तरह से जांच शुरू की। कोई कहता युवक विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं, कोई कहता मांस खाते हैं, कोई कहता वहां शराब के बिना काम ही नहीं चलता। माता ने यह सब मुझे सुनाया। मैंने कहा पर तू मेरा विश्वास नहीं करती, मैं तुझसे विश्वासघात नहीं करूंगा, कसम खाकर कहता हूं कि इन तीनों चीजों से बचूंगा, ऐसी जोखिम होती तो जोशी जी भला कैसे जाने को कहते। मां बोली मुझे तेरा विश्वास है, पर दूर देश में कैसे क्या होता होगा, मेरी तो अक्ल काम नहीं करती, मैं बेचर जी स्वामी जी से पूछूंगी। बेचर जी स्वामी पहले मोड़ बने थे फिर जैन साधु हो गए थे, जोशी जी की बात ही सलाहकार भी थे, उन्होंने मेरी मदद की। कहा मैं इस लड़के से इन तीनों चीजों के बारे में प्रतिज्ञा कराऊंगा, फिर उसे जाने देने में हर्ज न होगा। उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई, मेरी मांस मदिरा और स्त्री सबसे दूर रहने की प्रतिज्ञा। माता जी ने जाने की अनुमति दे दी। हाई स्कूल में सभा हुई, राजकोट का एक युवक विलायत जाना आश्चर्यजनक समझा गया, जवाब में कुछ लिखकर ले गया था, वह जवाब भी मैं कठिनाई से पढ़ सका। इतना याद है कि सिर चकरा रहा था, बदन कांप रहा था। बड़ों का आशीर्वाद लेकर बंबई के लिए रवाना हुआ। बंबई की यह पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए। कांति दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगला अंक इसी दिन इसी समय।
1: वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने।
2: गांधी जी की आत्मकथा पर आधारित कुछ अंश कार्यक्रम गांधी दर्शन अभी आपने सुना।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं।

0: हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

जलवायु संदेश, जी हाँ, अभी आपने जलवायु संदेश सुना आकाशवाणी उदयपुर से। सवेरे के ठीक 8 बजने को है और ये समय होता है आपको दिल्ली केंद्र से जोड़ने का, जहाँ से पहले आप सुनेंगे हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में समाचार।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना

0: कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में

0: राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद।

0: वैष्णवी और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. French President Emmanuel Macron also recorded a special farewell video message in Hindi for Prime Minister Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: Priye Mitre Narendra, Muji Baut Kushi, we Abka Nice, Evian, or Paris. Mani Ise Sadve, Daure Telie, Tuagat Karke, France or Barat, Kidosti Amarai. I hope it was correct, but my dear Narendra,

0: फासले होते नहीं बनाए जाते हैं, मीलों दूर रहकर भी रिश्ते निभाए जाते हैं। दिखावे से जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि कुछ रिश्ते भरोसे से निभाए जाते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। तो चलिए, आपकी खुशी को बरकरार रखने के लिए हम भी आ जाते हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर लेकर, जहां होता है ज्ञान और मनोरंजन का संगम। तो चलिए बताते हैं, आज आपके हम सफर होंगे। मैं आपकी दोस्त परवीन और मेरे साथ हैं
1: ज्योति।
0: कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो ज्योति, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल और फिल्मी फ्राइडे की। आज हमारे श्रोताओं को बताएंगे डे स्टार्ट में सारी सूचनाओं की। T20 विश्व कप देंगे अपडेट और बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपडेट। स्मार्ट लिविंग में बताएंगे स्मार्ट बजटिंग और बजट के तरीके।
1: और आज फिल्मी फ्राइडे है, तो इस हफ्ते सिनेमाघर और OTT पर कौन सी नई फिल्में और वेब सीरीज धमाका कर रही हैं, उसका पूरा लेखा जोखा हम जानेंगे। और हम बात करेंगे सिनेमा का एक दमदार और संजीदा विषय पर, लैंड मोमेंट यानी कि भूमि आंदोलन पर बनी बेहतरीन फिल्मों की, जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया। और ये आपका शो है, तो आपकी मर्जी भी चलेगी ना। लिसनर्स कनेक्ट में शामिल कीजिए अपनी मजेदार मैसेजेस, हमें भेजिए आपकी बातें जो गूंजेंगी पूरे उदयपुर में प्रोग्राम लिसनर्स कनेक्ट के दरमियान। तो फिर देर किस बात की, मुस्कुराइए और ट्यून इन रहिए रेडियो लिक सिटी नमस्कार उदयपुर के साथ।

0: किसी को बुरे वक्त पर साथ देना ही जिंदगी का सबसे अच्छा काम होता है। तो ज्योति, आज एक अच्छा काम हम भी करते हैं,
1: बेशक
0: हमारे लिसनर्स को देते हैं लोकल अपडेट्स। मानसून पूर्व रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार को शहर के कई क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रानी जी की बावड़ी, कल्लड़वास ग्राम, पार्श्वनाथ वैली, दिवाली मगरी, केसरपुरा और अरिहंत विहार और सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक ऋषभ नगर, गांधी नगर, एमपी कॉलोनी, खेड़ा सर्कल और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वीआईपी कॉलोनी, लक्ष्मी नारायण नगर, सेठ जी के कुंडाल, बलीचा क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। अल्पसंख्यक छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास उदयपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला एवं कल्याण अधिकारी ने बताया कि कक्षा 9 से उच्च कक्षाओं, महाविद्यालयों, कोचिंग और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायों को छात्राओं के साथ एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग की छात्राएं भी आवेदन कर सकती है। आवेदन 30 जून तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय नई कलेक्ट्रेट भवन में जमा किए जा सकेंगे। छात्रावास में शहर में बाहर की छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाएगा।
1: बिल्कुल परवीन, और एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

0: यानी कि ईपीएफओ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी कि PMVBRY के राष्ट्रव्यापी लाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम उदयपुर के उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रव्यापी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को लाभ वितरित करेंगे। ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों, नियोजकों और लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के उद्देश्यों और लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये योजनाएं भारत सरकार के रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों और विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाई जानी आवश्यक है। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस कार्यक्रम में उदयपुर के सभी गणमान्य अतिथि, सांसद और शहर विधायक सहित सभी गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ ही श्रोताओं को बता दें कि आज रेडियो लेक सिटी पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। उदयपुर विज्ञान आज उस मुकाम पर है जहां हर सूने आंगन में किलकारी गूंज सकती है, बस जरूरत है सही और हिम्मती कदम उठाने की। आज रेडियो लेक सिटी पर हेलो डॉक्टर में डॉक्टर मोनिका खंडेलवाल होंगी हमारे साथ। उनसे बातचीत होगी पुरुष और स्त्री निसंतानता विषय पर, और संबंधित विषय पर अगर आप जानकारी चाहते हैं या फिर कोई जिज्ञासा रखते हैं तो हमें व्हाट्सएप करेंगे, आप कर सकेंगे प्रोग्राम के दौरान, और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।
1: बिल्कुल ज्योति, शिवरम उत्सव भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और कला के समन्वय को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से महाकाल मंदिर परिसर में 25 से 28 जून तक 4 दिवसीय बाल रचनात्मक कला उत्सव शिवरंग आयोजित किया जाएगा। सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर श्री महाकालेश्वर की लहर कला महोत्सव समिति और आर्टिस्ट नॉट उदयपुर के साझे में होने वाले इस आयोजन में बच्चों को चित्रकला, हस्तकला और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। और इसका उद्देश्य बच्चों में सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति रुचि विकसित करना है। शिव के विविध स्वरूपों और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित यह उत्सव बाल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ उन्हें कला और संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बनेगा।
0: और परवीन, मौसम की भी जानकारी अगर हम अपडेट दे रहे हैं तो ये भी लाजमी है कि हम मौसम की बात करें। तो गुरुवार को दिन भर हल्के बादल छाए रहे, इससे पहले बुधवार रात हुई बारिश के बाद तेज उमस और गर्मी से कल थोड़ी राहत रही। कुछ स्थानों पर खंड वर्षा हुई, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर का तापमान रहा अधिकतम 34.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20.7 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग कहता है कि अगले दिनों में मौसम में परिवर्तन की स्थिति रह सकती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में बादल सक्रिय हैं। इससे पहले राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात हुई, तो बदलाव का दौर है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: गुनगुनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं विश्व के खेलों के महाकुंभ की। तो ये है फीफा वर्ल्ड कप 2026। कल के मैचेस की बात करते हैं परवीन। तो कल कई सारे मुकाबले हुए जिनमें इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मुकाबला हुआ। पहला अगर उस मुकाबले की बात करें, ग्रुप एल में ये मुकाबला हुआ और इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने शानदार 2 गोल दागे और टीम का आक्रामक खेल इस जीत की वजह बना। और इसके साथ ही इंग्लैंड ने अपने इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के लगातार 3 ओपनिंग मैच जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, और इससे अगले मैच की बात करें ग्रुप एल में, तो घाना और पनामा के मैच हुआ। उन दोनों के मैच में घाना ने 1-0 से जीत दर्ज की है। और ये खास बात रही इस मैच की कि इसमें जो गोल हुआ ना, जो एक इकलौता गोल हुआ, वो भी 95 मिनट में किया गया था। तो सबसे देरी वाला गोल ये अभी तक गिना गया। और ग्रुप ए में मैच हुआ चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जो 1-1 से ड्रॉ रहा। मैक्सिको सिटी में ग्रुप के में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को हरा दिया।
1: बिल्कुल, 20 जून 2026 को फीफा वर्ल्ड कप में कुल 5 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। चूंकि टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हो रहा है, तो इसलिए भारतीय समय अनुसार कुछ मैच 20 जून की सुबह तड़के और कुछ मैच रात को शुरू होंगे। यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी का मैच रहेगा, जो कि 12:30 बजे से शुरू होगा रात को। मोरक्को और स्कॉटलैंड के बीच ग्रुप सी से मैच खेला जाएगा, जो 3:30 बजे से शुरू होगा। ब्राज़ील वर्सेस हैती, जी हाँ, ये 6:00 बजे से शुरू होगा। तुर्की बनाम पराग्वे, ये वाला मैच जो है वो 8:30 बजे से शुरू होगा। ग्रुप डी से ये मैच खेला जाएगा। नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन, जी हाँ, ग्रुप एफ का ये मैच है, जो रात 10:30 से शुरू होगा।
0: और फुटबॉल से इतर अब हम बात करेंगे महिला T20 क्रिकेट की। तो महिला T20 वर्ल्ड कप की पिछली फाइनलिस्ट दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की

0: कप्तान की अर्धशतकीय पारी का उनका टोटल बना, लेकिन वर्ल्ड कप में पहली 50 बनाई एनरी डर्कसन ने और इस तरह से अफ्रीका को जीत दिला दी। तो ये मैच रहा कल महिला T20 क्रिकेट के दौरान हुआ। और इसी के साथ में
1: आज का जो मैच है, बिल्कुल आज का जो मैच है और आज का मुकाबला हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच खेला जाएगा रात 11 बजे से।
0: और अब हॉकी की भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि बड़ी खास खबर है ये कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रो लीग में उलटफेर करते हुए वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 3-1 से करारी शिकस्त दी है परवीन। तो वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले जा रहे नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है और इस तरह लगातार तीसरी जीत के साथ भारत पूल ए में टॉप पर है और अब सेमीफाइनल में जगह बना चुका है।
1: बिल्कुल।

0: 10 लाख रुपए खर्च करने से पहले 1 लाख रुपए मैनेज करना सीखो, 1 लाख रुपए खर्च करने से पहले 10,000 रुपए मैनेज करना सीखो, 10,000 रुपए खर्च करने से पहले 1,000 रुपए मैनेज करना सीखो। ज़्यादा पैसा मतलब अमीरी नहीं, बल्कि जो पैसा है वो अच्छे काम पर खर्च करो, क्योंकि जो लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचाते भी हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोग कमाने का, खर्च करने का और बचत करने का आनंद उठाते हैं। तो ज्योति हमारे लिसनर्स को बताते हैं स्मार्ट लिविंग में स्मार्ट बजटिंग और बचत कैसे करें।
1: बिल्कुल परवीन, देखिए आजकल हाल ये हुआ है कि हमारी जेब और मानसिक शांति दोनों का बजट किस ट्रेंड ने बिगाड़ दिया है, सोचिए तो, दिखावे की जिंदगी।
0: बिल्कुल।
1: अब मेरी फ्रेंड जा रही है यूरोप ट्रिप पर, तो अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, मुझे भी जाना है, या फिर उसके भाई ने तो नई कार ली है, मुझे भी तो लेनी है ना, मेरी कार कितनी पुरानी सी लग रही है। या फिर सोनिका, आपने ये देखा है नया वाला कंगन कैसा लग रहा है? हाँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई, मुझे भी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: तो सवाल ये है कि क्या ये हमारी ज़रूरतें हैं, या फिर हम दूसरों को दिखाने की चाहत से कई सारे कर्ज ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिट इस्तेमाल कर देते हैं, EMI पर और EMI जोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि दिखाने के लिए ही सिर्फ ये सब कर रहे हैं, जबकि उनकी एक्चुअल ये सब की नीड नहीं होती, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम भी ये फ़ोटो खिंचाएंगे, हम भी इस चीज़ को वायरल करेंगे, और फिर देखिए हमारे कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं, हमारे कितने लाइक्स मिलते हैं। खुशी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी भविष्य की ज़रूरत को भूल जाएँ और महंगे गैजेट खरीदें, ब्रांडेड चीज़ें खरीदते रहें, चाहे आवश्यकता हो या ना हो, और हमारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती हो या ना देती हो। हमें ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बनाना चाहिए, पर वो कर्ज और तनाव दे रही है तो ऐसी सुविधाओं को तो ना ही कहना चाहिए।
0: बिल्कुल ज्योति, बजट असल में आपकी आय और खर्चों पर आधारित एक खर्च योजना है। बजट बनाने से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप अपना पैसा कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, और यह एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर सकते हैं। आपको क्या क्या करना है? आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने खर्चों पर नज़र रखनी है, अपनी आय की गणना करनी है, और अपने मासिक खर्चों की सूची बनानी है, और मेन बात जो है ज्योति, इसमें बजट बनाने की विधि आपको चूज़ करनी है।
1: हाँ, अब इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला 50-30-20 का भी है, जो बहुत पॉपुलर है, कि जितनी आपकी कमाई है आप उसे एक बार पूरी कमाई, किसी भी स्रोत से जो आपके पास कमाई आ रही है उस कमाई को लिखिए, उस कमाई का जो आवश्यक खर्च है, घर खर्च होता है, फीस होती है, किराया देना होता है, इन सब को एक लिस्ट बनाई, तो ये लिस्ट जो बनी उतना 50%, उसके अलावा 30% वो जो ज़िंदगी जीने के लिए, जैसे कि आप प्लान करते हैं मुझे ये शूज़ खरीदने हैं, या फिर मुझे अपने फ्रेंड के साथ कैफ़े में जाना है, वीकेंड पर पार्टी करनी है, लाइक दैट, कि आप ऐसी कोई चीज़ करना चाहें उसके लिए 30% जमा करके रखिए, प्लस जो लास्ट 20% है, जिसे हम सबसे लास्ट में काउंट करते हैं खर्च हो जाने के बाद, उससे सबसे ऊपर रखिए। 20% हमेशा सेविंग में जाना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा रूल ये भी कहता है कि जितनी आपकी सैलरी है उसका 6 गुना आपके पास सेविंग रखी रहनी चाहिए, उसके बाद आप अगर खर्च करते हैं तो वो आपको तनाव नहीं देगा, वो आपका खर्च फिर भी वाजिब गिना जाएगा, और ज़िंदगी जीने में आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन तनाव सर पर लेकर, क्योंकि जैसे परवीन हमारे पास ऑफर्स आ रहे हैं एक के साथ एक फ्री, हमें लेना भी तो है ये सब, लेकिन उन सबसे अपने आप को बचाइए।
0: बिल्कुल, तो आपको करना है स्मार्ट बजटिंग और बचत।

0: नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और सवेरे के 9 बजने को है श्रोताओं। तो अब कुछ ही पलों में आपको लिए चलेंगे जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के संचालन के लिए प्रदेश भर में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश में सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम हैं। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 जगहों पर होंगे।
2: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के

अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल पारदर्शी पानी की बोतल और प्रवेश पत्र रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ही ले जा सकते हैं। कलावा, पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक और पूरी बाजू के कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को सघन जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारी आभूषण और धातु की वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पेपर लीक जैसी किसी भी संभावित गड़बड़ी

0: प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पेपर लीक जैसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्रदेश भर में विशेष टीमें तैनात की हैं। ये टीमें कोटा, सीकर और जयपुर जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, पीजी और सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। पांचना बांध से सिंचाई जल के गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर आज भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक संयुक्त बैठक रखी गई है। बैठक में सभी पक्षों से चर्चा कर विवाद का हल निकालने और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर सहित सवाईमाधोपुर के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहरों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से रखी। गौरतलब है कि करौली के किसान प्रतिनिधि महापंचायत में व्यस्त होने के कारण कल की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए आज फिर से बैठक रखी गई है। प्रदेश के लूनी बांध का नाम अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा जाएगा। जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ब्यावर के आशापुरा माता धाम में आयोजित एक समारोह में ये घोषणा की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इतिहास में वीरों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है और हीट वेव से पूरी तरह राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के वायुमंडल में बने नए सिस्टम से हवाओं की नमी में तेजी से बदलाव आया है। इससे आज राज्य के सभी संभागों में बारिश के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। इस बीच कल दोपहर बाद चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में मौसम अचानक बदला और तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओले भी गिरे। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी कल ही अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर पहुंच जाएंगे। इस बीच योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। जगह जगह योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर योगा चैंपियंस के साथ योग किया। इधर हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आज शहर के विश्व प्रिय शांति पार्क में सामूहिक योगाभ्यास किया गया।
1: शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित जनों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन एवं श्वासासन जैसी महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव दूर होता है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की।

0: राज्य में परीक्षा के पारदर्शी संचालन के लिए कोचिंग शहरों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश के सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडिया व्यू 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 9:10 हो रहे हैं और आप सभी का स्वागत कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। तो चलिए बात करते हैं, जिंदगी में मस्ती तो होनी ही चाहिए और वो हर दिन तो नहीं कर सकते, तो चलो आज ही कर लेते हैं थोड़ी मस्ती, क्योंकि आज है फिल्मी फ्राइडे। और फिल्मी फ्राइडे में हम लेकर आते हैं इस सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्में और ओटीटी श्रृंखला। आज ही के दिन 19 जून को बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्मों का धमाका होने वाला है। ज्योति, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। ये फिल्में आज ही के दिन दस्तक देगी। इसमें शाहिद कपूर, सामंथा, रुथ प्रभु, सूर्या, चंदू, सलीम कुमार समेत कई छोटी बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली है। ऑडियंस को खास इंतज़ार रहता है आज ही के दिन का, क्योंकि आज होने वाली है 20 भाषाओं से भी ज़्यादा फिल्में रिलीज़। बात करते हैं बॉलीवुड की। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 आ रही है। फिल्म को होमी अज्जानिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का ट्रेलर और गाने काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। कॉकटेल के पहले पार्ट को पसंद करने वाली ऑडियंस फिल्म का इंतज़ार कर रही है, तो आज उनके इंतज़ार को ख़त्म कर देंगे बॉलीवुड वाले, क्योंकि आज आएगी ये वाली मूवी बॉलन द बॉय से उम्मीदें। कॉकटेल 2 के बाद जिस बड़ी फिल्म की चर्चा हो रही है वो है मलयालम सिनेमा की पैन इंडिया फिल्म बॉलन द बॉय। मलयालम सिनेमा शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है और ऐसे में ऑडियंस की नज़र इस फिल्म की कहानी को जानने का इंतज़ार कर रही है, तो ये फिल्म भी आज ही आने वाली है। ज्योति,
2: तो फिर आप थिएटर में जाकर फिल्म देखना पसंद करते हैं या फिर घर के सोफे पर बैठकर आराम से सीरीज देखना चाहेंगे, तो ओटीटी पर भी इस हफ्ते सस्पेंस थ्रिलर से लेकर धमाकेदार ड्रामा सीरीज की नई खेप रिलीज हो रही है। रिमोट की बैटरी चेक कर लीजिए, क्योंकि आज ओटीटी पर आपके बिंज वॉच का पूरा इंतजाम हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं परवीन उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं। ये है सस्पेंस फिल्म दृश्यम 3। जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली की कहानी वहीं से फिर से शुरू हो रही है जहां लगता था कि सब शांत हो गया है, पर बस पुलिस फिर से तैयार है और देखने वाली बात होगी कि जॉर्ज कुट्टी के पास इस बार कौन सा नया मास्टरमाइंड प्लान तैयार है। तो ये जानने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप दिल टूटने और फिर इंतकाम लिया जाता है ऐसी कहानियों के शौकीन हैं, तो जियो हॉटस्टार पर आ रहा है टुकड़ा के मेरा प्यार का सीजन 2। पिछले सीजन का आपको क्लिप हैंगर याद है ना, तो इस बार राजनीति, सस्पेंस और बदले की आग और भयानक होने वाली है। और अगर बात है थोड़ी हंसी मजाक की, कुछ अलग देखना है, तो जियो हॉटस्टार पर तमिल फिल्म केनाता कानोम लग रही है। सूखे गांव की कहानी है जहां लोग कुआं खोद रहे हैं परवीन, पर कुएं में से निकल आती है डायनासोर की हड्डियां। और अगर आप हॉरर के दीवाने हैं तो मलयालम फिल्म गू भी आ रही है जो भूतहा और जादुई कहानी है। और ग्लोबल लवर के लिए नेटफ्लिक्स पर आ रही है एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल रोमकॉम, ये है वॉइस मेल्स फॉर इसाबेल। एक ऐसी लड़की की कहानी है परवीन इसमें, जिसमें भेजे हुए वॉइस मैसेजेस गलती से किसी अजनबी के पास चले जाते हैं और वहाँ से शुरू होती है नई दास्तान। तो ये पूरा जुगाड़ हो गया इस वीकेंड का। अब हमें बताइए कि आप इनमें से कौन सी सीरीज देखेंगे, मूवी देखने जाएंगे। व्हाट्सएप कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।

0: परवीन, जब भी प्यार मोहब्बत और गीत संगीत होता है ना तो हमारा दिल बहल जाता है, पर जब सिनेमा हमारी माटी, हमारे खेतों, हमारी जमीन को बचाने की जंग की बात करता है तो ऐसी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं रह जाती, वो आंदोलन बन जाती है। अब हम बात करेंगे उन फिल्मों की जिन्होंने जमीन की लड़ाई को बड़े पर्दे पर अमर कर दिया। भू आंदोलन से जुड़ी कुछ खास फिल्में, ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई कुछ खास फिल्में बताइए।
1: बिल्कुल ज्योति, इन फिल्मों में शोषित वर्ग की जमीन हथियाने की कोशिशों और उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के खिलाफ कानूनी और सामाजिक संघर्ष को सीधे तौर पर दिखाया गया, और उन फिल्मों में शामिल है दो बिगा जमीन। ये क्लासिक फिल्म है जो एक गरीब किसान यानी कि बलराज सहानी की कहानी को दर्शाती है, जिसकी पुश्तैनी जमीन को एक अमीर जमींदार कर्ज के बदले हड़पना चाहता है। अगली फिल्म की हम बात करें तो वो है मदर इंडिया। भारतीय सिनेमा की इस मील का पत्थर कहे जाने फिल्म में एक मजबूत महिला, जी हाँ, जिस अदाकारा को हम सभी आज भी याद करते हैं, नरगिस, इनके गांव के सूदखोरों और जमींदारों के अन्याय के खिलाफ अपनी जमीन और इज्जत बचाते हुए दिखाया गया है। बात करें फिल्म काला की, रजनीकांत अभिनीत यह फिल्म मुंबई की झुग्गियों, मलिन बस्तियों की जमीन को हड़पने वाले राजनेताओं और माफियाओं के खिलाफ स्थानीय लोगों की जमीनी और सामाजिक न्याय के संघर्ष पर केंद्रित है।
0: और इसी तरह पान सिंह तोमर फिल्म आई थी 2012 में, ये फिल्म इरफान खान के अभिनय से सजी भारतीय सेवा के एक सैनिक और एथलीट की सच्ची कहानी है, जो अपने गांव लौटने और अपने परिवार की जमीन पर कब्जा करने वाले स्थानीय भू माफिया की क्रूरता का सामना करने के बाद एक खूंखार विद्रोही बन जाता है। तो उदयपुर जमीन और मिट्टी से जुड़ी इन फिल्मों में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, क्या आपने ये फिल्में देखी हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर बताएं, क्योंकि अब कुछ ही पलों में होगा वक्त लिसनर्स कनेक्ट का, जहां हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस। सुनते रहिए अपना मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी, आकाशवाणी उदयपुर।

0: तो गुनगुनाते हुए अब हम देखते हैं अपने व्हाट्सएप इनबॉक्स को, तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। चलिए पहला मैसेज हम पढ़ते हैं, ये है सुशील यादव, रेनू यादव, हिरणमगरी सेक्टर 4 से। ये लिखते हैं कि जहाँ तक हम सोचते हैं बचत यानी सेविंग, तो अपने खर्चों के मद में से कुछ हद तक कटौती करके भी कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण परचेसिंग, ये भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, सबको बचत करना चाहिए, ये मस्ट है कि हम बचत कर रहे हैं और अपने लिए एक इमरजेंसी फंड भी, जैसे कि कभी सुरक्षा जो हमें महसूस होती है वो इस बचत से होती है। चलिए कुछ और मैसेज हैं, तो ये हमारे पास संदेश है, सीता श्रीमाली हैं, लिखती हैं कि प्रणाम प्रवीण और ज्योति, आपका ये कार्यक्रम हमें अच्छा लग रहा है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम कार्यक्रम सुन रहे होते हैं लेकिन मैसेज नहीं कर सकते। सीता श्रीमाली बेतला उदयपुर से, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आप हमारा प्रोग्राम सुनती हैं, इसके लिए भी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त और निकालिए और मैसेज भेजिए, हमें अच्छा लगता है, और आपके भी मैसेज आपके नाम के साथ पढ़े जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगला मैसेज एक और पढ़ लूँ मैं परवीन?
1: बिल्कुल।
0: तो ये मैसेज है हमारे पास ओम प्रकाश हरीश तिवारी जी का, ये अपने इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, तो इन सजेशंस के लिए हम आपको बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि इन्हें हम फॉलो करेंगे अगली बार से।
1: बिल्कुल ज्योति, और आगे मैं पढ़ूंगी मैसेज, क्योंकि अब कमल सुहालका जी लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं कि प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार, गणी गणी खम्मा, उन्हें जो भी

0: प्रोग्राम्स आज गुड फ्राइडे, हमारा जो फ्राइडे फिल्मी फ्राइडे प्रोग्राम्स उन्होंने सुना, उनका उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और वो कह रहे हैं कि हम डेफिनेटली ये मूवीज़ देखने जाएंगे। और उन्हें उन्होंने ये भी कहा है कि पहले हम साइकिल पर जाकर पुरानी अपनी भाषा में पिक्चर देखने जाया करते थे, ये भी काफ़ी अच्छी और रोचक बात उन्होंने लिखी है। उसके बाद विक्रम जी का मैसेज हमारी डिस्प्ले पर आया है, वो कहते हैं उन्होंने एक मूवी बताई है ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस मूवी को भी शामिल करें। उसके बाद एक मैसेज आया है प्रेम पूरी, ये लिखते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं, इन्हें हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं और आज नमस्कार उदयपुर में जो भी सारे सेगमेंट्स हैं उन्हें काफ़ी पसंद आए हैं और फिल्मों के लिए वो भी यही कहते हैं कि हम भी डेफिनेटली फिल्में देखने जाएंगे।
1: तो बड़ी खुशी होती है ना इतने सारे मैसेजेस देख करके। और इसके अलावा हम श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि आप अपने सुझाव भी हमें देते रहिए और कार्यक्रम में जिस तरह से आपकी भागीदारी होती है, भागीदारी बढ़ती है तो ये हमें प्रेरणा देती है कि हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
0: प्रेमपुरी जो कहते हैं हमारा जो फेवरेट चैनल है वो FM रेडियो लेक सिटी है, जिसे हम हर रोज़ सुनते हैं, हम उसके नियमित श्रोता हैं, इन्होंने हमें ये मैसेज किया। तो ज्योति अब देखो घड़ी भी हमें इशारा करे कि नमस्कार उदयपुर का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने आज दी, हमारे श्रोता के मैसेजेस भी हमने लिए और हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की हमारे लिसनर से हम कनेक्ट हो सके, फिल्मी फ्राइडे के लिए हमने बात करी। तो अब आगे का क्या प्लान है?
1: बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगी कि रेडियो लेक सिटी पर 9:30 बजे सुनना ना भूलें हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। डॉक्टर मोनिका खंडेलवाल होंगी हमारे साथ और हमारी बातचीत का विषय रहेगा आज निसंतानता पुरुष और स्त्री में। तो इससे संबंधित विषय पर अगर आप सवाल करना चाहें तो हमें भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर सवाल, इसके व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9462697568। प्रोग्राम संवेदनशील है पर रूढ़ियों से हटकर अगर आप हिम्मत करेंगे और सवाल रखेंगे तो जानकारी भी बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी और निसंदेह फायदा तो होगा ही। रेडियो लेक सिटी पर हेलो डॉक्टर प्रोग्राम सुनना ना भूलें 9:30 बजे से।
0: बिल्कुल, हर मुश्किल तुम्हारे अंदर की ताकत का इम्तिहान लेने आती है, उसे डरने का मौका मत दो। इन्हीं अल्फाजों के साथ आज का हमारा नमस्कार उदयपुर प्रोग्राम यहीं तक, फिर मिलने के वादे के साथ आज मैं थी आपकी दोस्त परवीन और मेरे साथ
1: ज्योति।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं और ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है।

0: तो अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप
1: को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ गई।
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था

कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी

आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद

से प्याले, बड़े-बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटी सी छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी-कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह-तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। यह देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे-छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते-चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं।

0: मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था। पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजने को है और ये समय होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लेकर हाजिर है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आप आकाशवाणी उदयपुर से जुड़ चुके हैं और हम भी आ चुके हैं आपके लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का लेकर। तो चलिए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये पहला नगमा।

0: दादा ये कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे

0: चोरी।
1: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी
3: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन।
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
10: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
12: तो लिसनर्स, कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर है प्रोग्राम फिल्म संगीत का लेकर। आप सुन रहे हैं फिल्मी तराने, आकाशवाणी उदयपुर के साथ आप बने हुए हैं। चलिए सुनते हैं अगली आवाज। अगली आवाज है राहत फतेह अली खान की, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

दिलकश आवाज़ अरिजीत सिंह की फिल्म टू स्टेट से अभी आपने सुनी। चलिए सुनते हैं अगली आवाज़, नीति मोहन और पैपॉन की फिल्म तुमको मेरी कसम।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम फिल्म संगीत उदयपुर से आप सुन रहे हो। आपने ट्यून कर रखा आकाशवाणी उदयपुर का ये चैनल। चलिए फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गदर 2 का ये गीत, और इस गीत को खूबसूरत आवाज से सजाया है नीति मोहन ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत उदयपुर से आप सुन रहे हैं। आकाशवाणी उदयपुर का चैनल आपने ट्यून कर रखा है। आप सुनते हैं इस प्रोग्राम की अंतिम प्रस्तुति, जी हाँ, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म आजा नचले से। और इस गीत के साथ ही आपकी दोस्त परवीन को दीजिए इजाज़त। फिर मिलने के वादे के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।

सुबह के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गोखड़ा। गोखड़ा कार्यक्रम हुनवा वाला हगला लोगा ने मारो घनो घनो राम राम सा। आज आपरे लारे ई कार्यक्रम में मुहू कीर्ति बाई सा। गर्मी रा मौसम मायने दिन भर सूरज देवता आग बरसावे है सा। इन गर्म हवाओं रे बीच आज आपने थोड़ा ठंडक भरा राजस्थानी गीत सुनावांगा, तो लीजो सुनो यो पहलो लोकगीत।

समंदर या लहरा ले वैसा घनो चोखो यो लोकगीत तबारा फुनियो सीमा मिश्रा री आवाज में। ने आप सब जाना हो कि राजस्थान री संस्कृति में हर मौसम खातिर गीत बनिया तका है। गर्मी में पनिहारी गीत खूब सुनियो जावे है सा, जिनमें माटी री खुशबू और गांव री सादगी नजर आवे है। तो लो हुनो यो गीत।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
5: यात्री तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना।
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
10: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
12: श्रोतो, गर्मी री छुट्टियां याद आवे तो सबसे पहला गांव याद आवे। ओ नीम रो पेड़, आंगन में बिछी खाट और रेडियो पर बजता लोकगीत ने ये छोटी छोटी बाता ही जिंदगी ने खास बनावे है सा।

सुरूरी सुगंध और बातों री मिठास आप हुन रहा था बाईसा कीर्ति रे लारे। अब अनि प्रोग्राम से इजाजत लूहू सा, राम राम सा, मिलांगा फिर एक नवा प्रोग्राम में। तब तक मारी धरती ने याद राख जो और मुस्कुराता राजो।

कार्यक्रम गोखड़ा अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। दोस्तों, गजल सिर्फ अल्फाजों का सिलसिला

नहीं बल्कि जज्बातों का वो कारवा है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है। हर शेर में एक कहानी होती है, हर मिसरे में कोई याद बसी होती है और हर गज़ल अपने साथ मोहब्बत, इंतज़ार, खुशी और दर्द के अनगिनत रंग लेकर आती है।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
11: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
13: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
14: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
13: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
15: काश मैं ऐसी गजल लिखूं तेरे प्यार में, तेरा अक्स झलकता हो मेरे हर अल्फाज में, तेरे लिए ऐसे मोती सजाऊं अल्फाजों की सूरत में जिसका ना जिक्र हो दुनिया की किसी किताब में।

नीना मेहता और राजेंद्र मेहता की गाई ये खूबसूरत सी गजल अभी आपने सुनी। दोस्तों, हर गजल एक आईना है जिसमें कभी अपना चेहरा नजर आता है तो कभी किसी अपने की याद। आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं अगली खूबसूरत गजल।

हर गज़ल के पीछे कोई कहानी होती है, किसी की मोहब्बत, किसी की रवानी होती है। आइए सुनते हैं वो नगमे जिनमें दिल की जुबानी होती है।

आशा भोसले की गायी खूबसूरत सी गजल अभी आपने सुनी। कार्यक्रम था सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं भूतनाथ फिल्म से। इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

धड़कन फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में नदीम श्रवण का संगीत था। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत मदहोशी फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ में और संगीत है रूप कुमार राठौड़ का।

0: जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल चाहता है का गीत। शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

हम आपके दिल में रहते हैं इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें थी, संगीत था अनु मलिक का। आइए सुनवाते हैं अगला गीत आपको दिल फिल्म से, उदित नारायण और अलका अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: दी, हाँ? ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्व

कोई आपसा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें थी, संगीत था हिमेश रेशमिया का। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत चीनी कम फिल्म से, श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाजें हैं।

0: इस गीत के साथ ये फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 63 लाख से अधिक लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़ चुके हैं, जिनमें करीब 30% महिलाएं शामिल हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत पहली बार सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस अवसर पर देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राज्य में जयपुर सहित 7 स्थानों पर इन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर

0: विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आमजन से स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। गौरतलब है कि अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कुल 10 पदक जीते हैं। इन पदकों में 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को बीकानेर और जयपुर प्रवास पर रहेंगे। श्री वैष्णव रविवार सुबह बीकानेर पहुंचेंगे, जहां वे करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे बीकानेर के लालगढ़ से गुजरात के साबरमती के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचेंगे, वे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे तथा राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को भी रवाना करेंगे। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा होर्मूज जलडमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ये कतर से रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आए हैं। ये पोत आज सवेरे दाहेज एलएनजी टर्मिनल पर पहुंचा। ये कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक दबाव के बीच देश भर में एलएनजी की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। सरहदी जिले जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों का सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी राजस्व गांवों और ग्राम पंचायतों में ये विशेष सर्वे कराया जाएगा।
1: जितने भी 0 से 50 किलोमीटर्स की रेंज के रेवेन्यू विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पर एक सर्वे होना है, जिसमें एनक्रोचमेंट की दृष्टि से यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसका फंडिंग कहाँ से आया है, एनक्रोचमेंट है तो किस तरीके का इंक्रोचमेंट है, आबादी की क्या स्थिति है, खेती की क्या स्थिति है, वहाँ हमारे कितने पशुपालक हैं, क्या हमारी कैटल कौन सी वहाँ पर ज्यादा आबाद है, तो इस तरीके का एक जनरल सर्वे है जिसमें मुख्य हमारा ध्यान रहेगा इंक्रोचमेंट की स्थिति पर।
0: 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर कल शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को सभी तैयारियां तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस है। इसका आयोजन केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार संयुक्त रूप से कर रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है बहनों का खास कार्यक्रम महिला जगत।

0: शिमली,
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। डिंपल कैसी हो?
0: बहुत अच्छी। और आज सखियों की भी बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा कि आज सखियों से मिल लिया जाए। आपकी भी बहुत याद आई और बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपनी सखियों के साथ आज करना चाहती हूँ।
1: आपको मेरी याद आई तो मैं यहाँ चली आई, और हम दोनों को याद आई तो हम दोनों यहाँ हैं। और हमें पता है कि हमारी सखियाँ हमारे सामने हैं, दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें महसूस ज़रूर होती हैं, और उन्हीं के लिए ही तो हम दौड़े चले आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें बातें बहुत सारी करनी होती है। तो शुरू करें बातों का सिलसिला।
0: बिल्कुल,
1: तनाव प्रबंधन की आवश्यकता, ये बहुत अच्छा विषय है डिंपल, मेरे ख्याल से महिलाओं को लेकर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव प्रबंधन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यह न केवल गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, ये आजकल हमें बहुत ज़्यादा होता है, के जोखिम को कम करता है, बल्कि कार्य क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तनाव जो है आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा सा बन गया है। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे और उसका सही प्रबंधन न किया जाए तो यह शारीरिक

तेरी यादों का सिलसिला रुकता ही नहीं, दिल है कि तुझे भूलता ही नहीं। कितनी भी बिजी हो जाए ज़िंदगी, पर आपको याद किए बिना दिन गुजरता ही नहीं। हम आपको हमेशा याद करते हैं सखियों। इसी के साथ आगाज़ करती हूँ मैं खुर्शीदा बानू, और मेरे साथ हैं डिम्पल।

0: गुणवत्ता में भी सुधार करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तनाव जो है आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा सा बन गया है। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे और उसका सही प्रबंधन न किया जाए तो यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए तनाव प्रबंधन आवश्यक है।
0: बिल्कुल, और हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं ये हम अपने सखी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कि एक तो हम योग और प्राणायाम करें। गहरी सांस लेने से, व्यायाम और योग से मन शांत होता है और जब मन शांत होगा तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। और सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम जैसे सैर भी करें, साइकिलिंग भी करें, शरीर में एंडोर्फिन खुशी देने वाला हार्मोन का स्तर ये जो है सैर जो है और साइकिलिंग बढ़ा देती है।
1: बिल्कुल सही कहा, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आसान हैं, बहुत घरेलू हैं और हमारे बस में हैं, जिनको हम अपनाकर अपना तनाव कम कर सकते हैं। जैसे कि आप हंसे, बहुत ज़्यादा हंसे, हंसने से तनाव हार्मोन कार्टिसोल कम होता है और आपका मूड बेहतर होता है। कोई मज़ेदार शो देख लें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाता है।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ पर्याप्त नींद हमें लेनी चाहिए। मस्तिष्क को रिचार्ज करने के लिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए और सीमाएं तय करना चाहिए कि जैसे कि ना कहना हमें सीखना चाहिए और अत्यधिक काम के बोझ से हमें बचना चाहिए। बहुत सारा काम का प्रेशर होता है तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो काम को करें, थोड़ा थोड़ा करें।
1: बिल्कुल सही कहा, और मन को शांत रखें, ध्यान करें, मेडिटेशन, मसाज, गहरी सांस लेने के व्यायाम से हृदय गति कम हो सकती है और मन शांत हो जाता है। आप अपने पसंदीदा गाने या सुकून देने वाली आवाज़ें भी सुन सकते हैं जिससे आपका मन शांत रहेगा।
0: बिल्कुल, और हम अपने आप को बिजी रखने के लिए गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत से हमारी सखियाँ हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, रेस्ट नहीं कर पाती हैं। अगर जागने का शौक है तो गार्डनिंग कर लीजिए, और अगर स्विमिंग सिंगिंग का शौक है तो ये भी साथ ही साथ करती रहिए। और घूमने फिरने का अगर शौक है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जाएं और टेंशन फ्री हो जाएं।
1: बिल्कुल सही कहा, टेंशन फ्री रहें और आप फिजिकली भी थोड़े एक्टिव रहें। बाहर टहलना, घूमना, ये सब आपके घूमने का ही हिस्सा है। आप एक्सरसाइज करें जिससे मूड बेहतर होता है। आप योग कर सकते हैं, आजकल ताई ची के डांस स्टेप्स भी होते हैं जो कि वो शारीरिक व्यायाम होते हैं। और आप देखें कि फाइन आर्ट में बहुत नहीं होता है लेकिन मार्केट में ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, जिस जो एक थेरेपी के रूप में भी काम करता है और टेंशन फ्री करता है आपको।
0: बिल्कुल,
1: मंडाला आर्ट जैसी बुक्स मार्केट में मिलती है, आप बैठकर कुछ न करें, कलर ही करें, तो वो एक थेरेपी है जो आपको टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री कर देता है।
0: और हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और साथ ही साथ अब हमें भी अपनी सखियों को मस्त कर दूं।
1: बिल्कुल,
0: दर्द की शाम हो या दुख का सवेरा हो, सब कुछ कबूल है अगर साथ तेरा हो।

0: सिंपल गीत सुनने के बाद देखो तुम्हारे चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ गई है, टेंशन फ्री हो गई हो बिल्कुल।
1: बिल्कुल टेंशन फ्री।
0: अगर हम टेंशन फ्री हो गए हैं तो आगे चलें, हमारी सखियों को नए विषय की ओर लेकर चलते हैं आगे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: हम बताते हैं हमारी सखियों को नया विषय, ये है कि कार्यस्थल पर नेतृत्व करती महिलाएं। बहुत अच्छा विषय है ये। कार्य संस्कृति को अधिक समावेशी और सहयोगात्मक बनाती है और अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समानुभूति और परिवर्तनकारी नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आज का जो आधुनिक युग है उसमें महिलाएं जो हैं वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रही है। और कार्यस्थल पर भी महिलाओं का नेतृत्व न केवल संस्थाओं के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है बल्कि समानता, नवाचार और सकारात्मक संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों और संगठनों में महिलाएँ उच्च पदों पर पहुंचकर बहुत सारे प्रभावी निर्णय लेने और टीमों को सफल नेतृत्व करने में सक्षम सिद्ध हुई है।
0: बिल्कुल, कार्यस्थल पर जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो मुख्य लाभ होते हैं सहयोग और समावेश। महिला नेतृत्वकर्ता एक टीम के रूप में काम करने पर जोर देती हैं और एक कर्मचारी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल भी करती हैं। साथ ही साथ समानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कारण वे कार्य जीवन संतुलन और कर्मचारियों की मानसिक भलाई का विशेष ध्यान भी रखती हैं।
1: बिल्कुल। और जटिल परिस्थितियों में भी महिलाएं संतुलित निर्णय लेने और विभिन्न कार्यों को एक साथ संभालने में कुशल होती है, इसीलिए उन्हें मल्टीटास्किंग कहते हैं।
0: बिल्कुल, विविध दृष्टिकोणों को अपनाने से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है जिससे कंपनियों के मुनाफे और नवाचार में भी वृद्धि होती है। और रोल मॉडल नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की उपस्थिति अन्य युवा महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करती है और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।
1: बिल्कुल। और महिलाओं की लीडरशिप ट्रेनिंग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है जिसमें मेंटरशिप और नेटवर्किंग का काम जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे से कर पाती है।
0: महिलाओं को कार्यस्थल पर अपनी नेतृत्व क्षमता को निखारने और करियर में आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और IMD जैसे वैश्विक संस्थान विशेष मार्गदर्शन व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं। और अब हम भी फिर से आगे चलें।
1: जी,
0: तेरा नाम लूँ और दिल मुस्कुरा न दे, ऐसा कभी हुआ नहीं।

0: डिंपल, आज एक दिवस और है, बताओ मैं अपने संयोगों।
1: हाँ
0: यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि यौन हिंसा के शिकार महिलाओं, बच्चों और पीड़ितों को न्याय दिलाना और समाज में इस गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को संकल्प पारित करके इस दिवस की घोषणा की थी।
1: यह दिन हमें याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में मानव सम्मान सर्वोपरि है और हिंसा का कोई भी रूप स्वीकार नहीं हो सकता। यौन हिंसा का प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसका असर परिवार, समुदाय और पूरे

0: समाज पर पड़ता है। भय, असुरक्षा और सामाजिक कलंक जैसी समस्याएं पीड़ितों के जीवन को और अधिक कठिन बना देती है।
1: बिल्कुल, इसके उद्देश्य की बात करें तो युद्ध और संघर्ष के दौरान यौन हिंसा, बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति आदि को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की निंदा करना है। और सहायता और कानूनी जानकारी की अगर मैं बात करूँ तो यदि आपको या आपके किसी परिचित को मदद की आवश्यकता है तो भारत में यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आपातकालीन सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर है 112 और महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, बाल हेल्पलाइन है 1098 और साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। सखियो, इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए, कभी आपके भी काम आ सकते हैं या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए आपके आसपास है तो भी आप इन नंबर्स से हेल्प ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और शिक्षा, संवाद और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से हम हिंसा की घटनाओं को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनों की नहीं बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव की भी लड़ाई है। जब हम भेदभाव, असमानता और हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाते हैं तब हम एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि पीड़ितों को दोषी ठहराने के बजाय उनका समर्थन किया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया जाए।
1: महिलाएं शर्म की वजह से आवाज़ नहीं उठा पाती हैं और हादसे का शिकार एक बार नहीं बल्कि कई बार हो जाती है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम आवाज़ को बुलंद करें और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। जब तक हम अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा। डिम्पल, और इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को तितली न बनाएं, उन्हें मधुमक्खी बनाएं ताकि वे उड़ भी सकें और ज़रूरत पड़ने पर डंक भी मार सकें। है ना डिम्पल? सही बात है ना?
0: सही कहा।
1: और फिर से चलें घूमने फिरने?
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं तुम्हें सपनों में, तुम हकीकत बन जाओ तो क्या बात है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: डिम्पल, देखो धीरे धीरे हम आ पहुँचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, है ना। और अगर हम यहाँ आ गए हैं तो कुछ बातें भी ऐसी ही करेंगे जो हमारी सखियों को लाभ पहुँचाएं। देखो, खूबसूरत लगना किसे अच्छा नहीं लगता है, लगता है ना कि तुम भी खूबसूरत लगो, मैं भी लगूँ और मेरी सखियाँ भी लगें। और वो कैसे लगेंगी? वो ऐसे लगेंगी कि जब वो सुबह की सैर करेंगी, तो हम सुबह की सैर के लाभ बताएंगे, तब हमारी सखियाँ जो है सैर चालू कर देंगी। सही बात है ना डिम्पल?
4: बिल्कुल सही कहा। और सुबह की सैर जो खुद का ख्याल रखें और खुद के लिए समय निकालें, तो उसमें सुबह की सैर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहती है, जिससे कि सखियाँ अपने आप को फिट रख सकती है और सुंदर बना सकती है।
3: बिल्कुल, सुबह की सैर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन वरदान है। केवल 30 मिनट के नियमित वॉक वजन नियंत्रित करके दिल को मजबूत बनाने और तनाव को कम करके पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखने में हमें मदद करती है।
4: सुबह का समय प्रकृति का सबसे सुंदर और शांत समय माना जाता है। इस समय वातावरण जो है अपेक्षाकृत स्वच्छ होता है और हवा में ताजगी होती है। जब हम सुबह टहलने निकलते हैं तो हमें शुद्ध हवा और प्राकृतिक वातावरण का पूरा लाभ मिलता है।
3: बिल्कुल, इससे हमें क्या होता है कि मानसिक शांति और हमें ऊर्जा मिलती है और कई बार कई भयंकर बीमारियों से भी हमारा बचाव करती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक को हम ले लें। नियमित सैर ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है, रक्तचाप को नियंत्रित करती हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करती हैं। वजन नियंत्रण इससे होता है, सैर करने से अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन घटाने में हमें बहुत मदद मिलती है। बेहतरीन नींद लेनी चाहिए, सुबह जल्दी धूप में शरीर की प्राकृतिक घड़ी सही होती है, जिससे रात में अच्छी और गहरी नींद आती है। जब हम अच्छी तरह टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, थक जाते हैं और जब थक के सोते हैं तो एकदम जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश मूड में रहते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा। सैर जो है केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं, मन को भी, मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा फ़ायदा देती है। और विशेषज्ञों का मानना भी है कि सुबह की सैर तनाव, चिंता, मानसिक थकान को कम करने में सहायता करती है। और जब हम खुले वातावरण में चलते हैं तो मन को शांति मिलती है और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। और कई लोग बताते हैं कि नियमित सुबह की सैर से आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे दिन कार्य करने की ऊर्जा बनी रहती है।
3: सैर करने से जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, यह शरीर में जमा अतिरिक्त शर्करा का उपयोग करने में मदद करती है, जो मधुमेह के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है।
4: बिल्कुल सही कहा। और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, पाचन तंत्र बेहतर कार्य करता है, भूख खुलकर लगती है और भोजन अच्छे से पचता है और शरीर अधिक चुस्त दुरुस्त महसूस करता है।
3: बिल्कुल, सैर करने के बहुत सारे फायदे हैं सखियों। जल्दी उठिए और सैर करिए ताकि जिंदगी जीने का और मज़ा आ जाए सखियों। पहला सुख निरोगी का, यह हम

0: भी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं उनके लिए सुबह की सैर जो है विशेष रूप से फायदेमंद होती है, क्योंकि यह शरीर की जकड़न को दूर करती है और मांसपेशियों को और ज़्यादा सक्रिय बनाती है। और एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि अच्छी नींद। नियमित रूप से सुबह सैर करने वाले लोगों की दिनचर्या संतुलित रहती है और जिसकी वजह से उनको रात को अच्छी नींद आती है। और जब नींद अच्छी आती है तो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं होते, आप थकान महसूस नहीं करते, आपके चेहरे पर थकावट नहीं लगती है।
0: और जब भी हम घूमने फिरने जाते हैं, घूमते फिरते हैं, हम अपने जिलों के आसपास जाते हैं, अगर हमारे साथ छोटे बच्चे भी सैर करने आते हैं तो उनका भी हमें खास ख्याल रखना है, और पेड़ पौधों को हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जब हम घूमते फिरते हैं और हमारा ध्यान तो सैर पर रहता है, और हमारे जो बच्चे होते हैं नन्हे मुन्ने डिम्पल, वो आसपास हमारे पेड़ पौधों को जो है तोड़ते हुए चले जाते हैं, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें, हम उनका भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें कि बच्चों के हाथ में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो उनके रैपर्स वगैरह भी जो है झीलों में न डालें, क्योंकि हमारी झीलों की नगरी फेमस ही है और उसकी सुंदरता का हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। तो श्रोताओं, सुबह की सैर जो है एक ऐसी आदत है जो बिना किसी विशेष खर्च के हमें स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन प्रदान कर सकती है। और हमें चाहिए कि हमें अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें।
0: तो सखियों, वादा कीजिए कि आज से आप सुबह जल्दी उठेंगे और सैर करने ज़रूर जाएंगे। बता डिम्पल, मैं भी है ना पहले नहीं जाती थी, लेकिन है ना जब से जाने लगी हूँ तब से बहुत अपने आप को फ्रेश महसूस करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और अब हम सखियों को अच्छा लगे वो करें, एक चलते चलते आखिरी नजराना मेरी तरफ से अपनी सखियों के लिए। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे दिलों में ही रह जाता है, जिसे ना हम लिख सकते हैं और ना किसी को बता सकते हैं।

0: सखियों, आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। दूर हो जाए तो ज़रा इंतज़ार कर लेना, अपने दिल में इतना तो एतबार कर लेना। लौट के आएंगे हम अगर कहीं चले भी गए, आप बस हमसे दोस्ती बरकरार कर लेना। सखियों, इसी के साथ चलते हैं हम। नमस्कार।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम महिला जगत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत, और कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है फिल्म कॉकटेल 2 से। इस गीत को गाया है महमूद और राघव चैतन्य ने, संगीत प्रीतम का है।

मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडल की आवाजों को भी आपने सुना फिल्म थी धुरंधर। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म दे दे प्यार दे से।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क।

धड़क टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ें थी। आइए सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म गुड बाय से। इसे गाया है अमित त्रिवेदी ने।

अमिताभ भट्टाचार्य और सचिन जिगर की आवाजों को भी आपने सुना मुंजिया फिल्म से। आइए सुनवाते इस कार्यक्रम का आखिरी गीत भूल चूक माँ फिल्म से, जुबिन नौटियाल की आवाजें हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य और सचिन जिगर की आवाजों को भी आपने सुना मुंजिया फिल्म से। आइए सुनवाते इस कार्यक्रम का आखिरी गीत भूल चूक माँ फिल्म से, जुबिन नौटियाल की आवाजें हैं।

जो हम आपको बता दें कि शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में इस अवधारणा को पेश किया गया था। इसका उद्देश्य माइंडलेस कंजप्शन है, विवेकहीन खपत की जगह माइंडफुल यूटिलाइजेशन यानी कि सोच समझकर उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रो प्लैनेट पीपल इसका लक्ष्य ऐसे लोगों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना है जो पृथ्वी की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हो।

इस खूबसूरत से गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विकास चर्चा। इसका विषय है मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ यानी कि भारत के नेतृत्व में चलाया जा रहा एक वैश्विक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये आंदोलन उपयोग और फेंक दो की संस्कृति को बदलकर संसाधनों के विवेकपूर्ण और विचारशील उपयोग पर जोर देता है।

दैनिक जीवन में शामिल करने योग्य सात कुछ मुख्य विषय इस प्रकार हैं: ऊर्जा की बचत, अनावश्यक लाइट, पंखे बंद करना और एलईडी बल्ब का उपयोग करना, पानी की बचत, नल को खुला ना छोड़ना और नहाने में पानी का उचित इस्तेमाल करना, प्लास्टिक का बहिष्कार, एकल उपयोग सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों और वस्तुओं को ना कहना, सतत आहार, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करना, अपशिष्ट कम करना, कचरे को कम करना और उसे रिसाइकल करना और जैविक खाद का उपयोग करना, ई कचरे का प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सही तरीके से रिसाइकिल करना और कचरे में न फेंकना, स्वस्थ जीवन शैली, साइकिल का उपयोग करना और छोटी दूरी के लिए पैदल ही चलना। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मिशन लाइफ के बारे में। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। विकास चर्चा अभी आप सुन रहे थे। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माई गॉव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश

0: एक बेहतर गृह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन

0: और निर्मित तीन नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह

0: ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम रामा भाई, राम राम
1: राम राम गायत्री भाई सा, राम राम
0: कृषि जगत कार्यक्रम हुणवा वाला सगला किसान भाई बहना ने आपनो
1: राम राम, राम, राम सा।
0: कार्यक्रम रो टेम व्यू किसान भाई रे वास्ते भांत भांतरी जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन हाजिर व्यहा सा। और आज आप किसान री बात में कई लेन आया हो रामा भाई?
1: बिल्कुल, किसान री बात में देखो आज आप ही बात करांगा कि जो कृषि वानिकी है बंडा कई फायदा है और किसान भाई कई लाभ बंडा ले सके ऐसा। आप ही देखा कि कृषि वानिकी कैसी आधुनिक तकनीक या टिकाऊ कृषि पद्धति है जिनमें एक ही भूमि में फसला रहे लाल लारे कई पेड़ है, जिस तरह फलदार पेड़ वे गया, इमारती लकड़ी वेगी, औषधि पौधा वे गया। तो ये देखो पशुपालन में एकीकृत रूप में अपनावे तो निश्चित रूप से लाभ ले सकें। आप ही देखा कि पारंपरिक खेती तुलना में कई बेहतरीन फायदा है जने मुख्य रूप तीन भाग में आप ही बांट सका सा।
0: बिल्कुल सा, कृषि वानिकी नो मतलब भी यही से कि खेतीबाड़ी ते लारे लारे असा पेड़ पौधा रुकड़ा ने वावणा जणो खेतीबाड़ी रो तो लाभ मिले मिले लारे लारे वणा रुकड़ा मिलवा वालो जो उत्पाद है वणू किसान भाईयारी जो आय है वण में बढ़ोतरी वेवे अंडा नरई हारा आर्थिक फायदा भी है क्योंकि अणु जो है अतिरिक्त आय भी वेवे क्योंकि कतरी बार कहीं मुख्य फसल री कटाई रे बाद में ने जो किसान भाई है वे पेड़ों फल ले सके गोंद ले सके औषधियाँ है हुकी लकड़ियाँ है अणाऊँ वणा रुकड़ाऊँ मिलती रहे और जणू वणारी नियमित कमाई भी वे वह सा।
1: बिल्कुल साहब, जैसे दीर्घकालीन निवेश की बात करें तो कुछ साल बाद देखो कि पेड़ जो है वह वृक्ष रूप ले ले बढ़ावे जाए वन में आप ही देखा कि जो इमारती लकड़ी है वनडो आप ही उपयोग कर सका और एक लारे बड़ा मुनाफो कैसे कर सका। जड़ में आप ही देखा कि किसाना वाते जो बड़ा रुकड़ा है ये एक तरीका रो FD यानी फिक्स डिपोजिट रूप में भी काम कर है सा।
0: कतरी बार खेती बाड़ी में ने या तो वर्का नहीं वेवे तो हुको पड़ी जावे या बजे वर्ती वर्का वे जावे तो पालो पड़ जावे ठंड वत्ती वे तो पाला पड़वारी समस्या वे जावे तो मुख्य फसल जो है वह खराब भी वे जावे। लेकिन ये जो पेड़ जो किसान भाई जो लगाई रखा है वना पेड़ों वेवा वाली जो आय वेवे वह किसान भाई ने आर्थिक संकटों बचावे है यानी कहवानो मतलब यो है कि जोखिम अगर वेवे कदी तो जोखिम और सुरक्षा देवा में ने वानिकी रो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सर।
1: बिल्कुल किसान भाई, देखो दूसरों जो मुख्य फायदा करा वो है पर्यावरणीय फायदों। आप ही देखा कि जो पेड़ पौधा है वे पर्यावरण स्वस्थ

0: रखे, जड़ में आप ही देखा कि जो मिट्टी जो उर्वरता है वन में सुधार हुए। कई बार आप ही देखा कि पेड़ की पत्तियां देखो मौसम अनुकूल जमीन पे गिर जाए सड़ जाए तो वे पत्ते सड़ने जैविक खाद रो काम करें। और देखा कि लारे दलहनी है पेड़ हवा में देखो नाइट्रोजन लेने मिट्टी ने प्राकृतिक रूप उपजाऊ बना है। अगर मिट्टी उपजाऊ वेगा तो पेड़ पौधा बढ़वार भी अच्छी वेगा सा।
1: पेड़ा री जो जड़ा वे मिट्टी ने मजबूती हूँ जकड़न रखे है। जणू कतरी बार अगर तेज भी वर्का वेगी या तेज हवा चालगी तो वणु वेवा वालों जो भूक्षरण है वना ने रोकवा में पेड़ बहुत ही अहम भूमिका निभावे। लारे लारे ये जो पेड़ वेवे ये अपने जमीन में ने पानी सोखवा री जो क्षमता है अंडे भी बढ़ावे है। जणू अपने जो भूजल स्तर है वो वन में ने नरो हारो सुधार आवे सा।
0: बिल्कुल किसान भाई, तो आप ही कह सका कि कृषि वानिकी का ढेर हरा फायदा है। और आप ही देखा कि जनधारण जलवायु परिवर्तन में कतरी बार आप ही देखा कि गर्मी लाग रही, कतरी दान देखा कि सर्दी लाग रही, कतरी बार देखा कि मौसम बिल्कुल परिवर्तन हो जाए वर्षा हो जाए तो देखा कि पेड़ जो है वे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखे। जड़ों आप ही देखा कि पर्यावरण स्वस्थ रहे स्वच्छ रहे और उनमें आप ही देखा कि स्थानीय स्तर पर तापमान भी है वो संतुलित रहे।
1: बिल्कुल सा, लारे लारे कृषि वानिकी रा सामाजिक और खेतीबाड़ी संबंधी फायदा भी नरे आ रहा है। चारा और ईंधन री उपलब्धता वेवे क्योंकि खेतारी मेड़ा पे अगर पेड़ लगावे किसान भाई तो वनारे जो ढांडा चोपा वना राख रखे वनारे वास्ते पौष्टिक हरो चारो और घर रे वास्ते ईंधन री लकड़ी जो है वह आसानी मिली जावे। लारे लारे ऊंचा जो पेड़ वेवे जनारी ऊंचाई बहुत ज्यादा वेवे वे तेज हवा और आंधी ने रोकना फसला ने गिरवा और नुकसान वेवाओं बचावे है सा।
0: बिल्कुल, तो देखो कृषि वानिकी का फायदा और आप देखा कि जैव विविधता भी है। अणि प्रणाली में आप देखा जो मित्र कीट है पक्षी है सूक्ष्म जीव है प्रकृति में आवास देवे जो फसला ने नुकसान पहुंचा वाला जो कीट है उन्हें नियंत्रित करवा में भी मदद करे है सा। तो देखो किसान भाई, आज अणि कार्यक्रम में आप बात की दी कि कृषि वानिकी का कई फायदा है। और देखो कार्यक्रम में बातचीत तो चलती रहेगा और किसान भाई और मनोरंजन करावा होना वही राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सर।

0: दी, हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना,
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: तो रामा भाई किसान भैया ने घणो ही मनभावन राजस्थानी गीत हुणायो सा, लारे लारे संदेश भी हुणाया, कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और किसान भैया रे वास्ते आपा हर दिन नवी नवी योजना लेन आवा सा। और अणा योजना लावा रो उद्देश्य भी यो इस वेवे कि किसान भाई अणा योजना ने जानकारी लेवे और योजनाओं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवे। तो आज किसान भैया रे वास्ते लेन आया हाँ मंगला पशु बीमा योजना। या जो योजना है या विशेष रूप पशुपालका ने वित्तीय सुरक्षा देवारे वास्ते शुरू की दी लकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और या देश रे नरेहारा राज्य में ने डेयरी विकास और पशुपालन ने बढ़ावो देवारे वास्ते अलग अलग स्वरूपा में लागू की दी ही और जन्मे ने राजस्थान सरकार की पहल भी बहुत ही प्रमुख रही है सा।
7: बिल्कुल सा। और देखो योजना रे उद्देश्य की बात करा तो देखो पशुपालका में देखो जो कीमती मवेशी है जिस तरह गाय है भैंस है ये कई बार आप देखा कि अचानक बीमारी या दुर्घटना या फिर किसी का प्राकृतिक आपदा पे हमारी मृत्यु हो जावे तो देखो यानी भारी आर्थिक नुकसान ने बचाव आते बीमा कवर मिलवाऊँ किसान दोबारा पशु खरीदवा में सक्षम हो जावे। तो मंगला पशु बीमा पशुओं संबंधित योजना है। प्रमुख विशेषता और लाभ की बात करें तो सस्तों प्रीमियम है यानी योजना के तहत देखा कि पशुओं और बीमा जो प्रीमियम है वो कम हुए और प्रीमियम रो एक बड़ो हिस्सों सरकार द्वारा सब्सिडी रूप में दिए जाए जन में आप देखा कि छोटा है या सीमांत किसान है जन पे बोझ नहीं पड़े है सा।
6: बिल्कुल सा। लारे लारे मंगला पशु बीमा योजना रे तहत बीमा किदा लखा पशुवारा कान में ने एक विशेष यूआईडी टैग लगायो जावे जनू वणारी पहचान सुनिश्चित रहे है सुरक्षित रहे है और पशुवारी मृत्यु वेवा पे वणा ने बाजार कीमत पे या पचे योजना रे तहत निर्धारित अधिकतम राशि जिस तरह की 40,000 लेन 50,000 रुपया प्रति गाय या भैंस तक जो नीति रे अनुसार तय वेवे वंडो क्लेम मिले है सा।
7: बिल्कुल सा। और पात्रता की बात करा तो देखो आवेदन करवा वाला व्यक्ति संबंधित राज्य रो मूल निवासी होनो चाहे पशुपालक या किसान वेणो चाहे झंडे पास खुद रो दुधारू पशु या अन्य मवेशी भी वेणो चाहे। आमतौर पर आप देखा कि पारंपरिक रूप गाय है भैंस है जैसा बड़ा दुधारू पशुओं में प्राथमिकता दी जाएगा और आप देखा कि आवश्यक दस्तावेज है वे कई है सा।
6: बिल्कुल सा। मंगला पशु बीमा योजना रो अगर लाभ लेनो चाहे तो या आवेदन करना चाहे किसान भाई तो किसान भाई ने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड या पचे निवास प्रमाण पत्र री जो है वह आवश्यकता वेगा। लारे लारे बैंक खाता री पासबुक वो भी वेणो जरूरी है। पशु रो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और यो प्रमाण पत्र सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा जारी की दो लको वेणो छावे और पशुपालक रो पासपोर्ट साइज फोटो ये सब जो आवेदन है ये आवेदन वेणा बहुत ही ज्यादा जरूरी है सा।
7: बिल्कुल किसान भाई। और देखो खेती बाड़ी लाल लारे देखो जो भी ढांडा चौपा आना और विशेष रूप आपने ध्यान रखना है

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: किसान भैया ने प्यारो सो मनभावन राजस्थानी गीत हुनायो सर, लाडा लाडे संदेश भी हुनाया। किसान भाई अरे वास्ते अबे जानकारी लेना आया कि किसान भाई नकली खाद री पहचान किस तरह कर सके, क्योंकि खेती बाड़ी में ने खाद मिट्टी अनारो बहुत ही महत्व देवे है, और अगर किसान भाई टेम रहता अगर नकली खाद री पहचान कर लेगा और असली खाद ने अगर अपने खेता में उपयोग में लेगा तो वेवा वाली जो खेतारी उत्पादकता है वह घनी हाँची वेगा सा।
4: बिल्कुल साहब, देखो नकली और असली खाद में फकर किस तरह पता करा, तो देखो असली DAP री पहचान आप ही देखांगा तो DAP रे कुछ दाना ने हाथ में लेने उनमें चूनो मिले ने अगर आप ही मलांगा तो अगर तेज गर्म निकलेगा तो सूंघना मुश्किल हो जाएगा, तो समझ लेना कि DAP असली है। कई बार आप ही देखा कि DAP में कुछ दाना धीमी आंच पर तवा पर गर्म करना है, यदि ये दाना फूल जावे तो भी आप ही पहचान कर सका कि अंडी जो समझ है वह DAP जो आप ही देखा कि वह सही है। कई बार आप ही देखा कि अंडी असली पहचान है तो अंडा जो कण है वे भूरा काला और बादामी रंग रहा है, और कई बार देखा कि नारलियों आकानियों सही तरीकों टूटे नहीं, तो देखो यह सही तरीका री DAP री पहचान है।
3: असली यूरिया री पहचान अगर किसान भाई ने करनी है तो यूरिया री असली पहचान रे वास्ते अगर वे सफेद चमकदार लगभग समान आकार अगर कड़ा दाना है तो वो असली यूरिया है। लारे लारे पानी में ने अगर ये यूरिया पूर्णतया घुल जावे या अंडे गोल ने छुआ पे शीतल अनुभूति वेवे या ठंडक महसूस वेवे तो यह अंडे असली पहचान है, और यूरिया ने तवा पे गर्म करवाऊ अनारे दाना जो है वे पिघल जावे या पचे आँच तेज करदा और अंडो अवशेष नहीं बचे तो हमझ लेनो कि यो असली यूरिया है सर।
4: बिल्कुल सर, देखो DAP री बात की दी, असली यूरिया री बात की दी, और देखो खाद में असली सुपर फास्फेट भी डाला, तो देखो अभी खेती बाड़ी में जो खाद डाल रहे हैं तो उनमें देखो कि सुपर फास्फेट भी उपयोग करा, तो उनमें देखा कि सुपर फास्फेट असली पहचान यह है कि अनमें सख्त दाना और भूरा काला बादामी रंग रहे हुए, और मैं आप ही देखा कि सुपर फास्फेट का कुछ दाना तवा पर गर्म करा तो यदि दाना नहीं फूले तो समझ लेना कि ये असली सुपर फास्फेट है। अंडे अलावा देखा कि दानेदार उर्वरक या मिलावट में बहुत DAP या AP मिले ना, आप ही देखा कि उर्वरक लारे जावारी संभावना भी बनी रहे, तो ये अंडी असली है दाना ऐसा।
3: असली जिंक सल्फेट री पहचान किसान भाई किस तरह कर सके वंडी भी जानकारी करावा। जिंक सल्फेट री असली पहचान यह है कि अंडा जो दाना है वे हल्का सफेद पीला या पचे भूरा बारीक कंडरा आकार रवे वे है, और DAP रा गोल में ने अगर जिंक सल्फेट रो गोल मिलावा तो यो जो गोल है वो अवशेष वणई लेवे तो हमझ लेनो कि यह असली जिंक सल्फेट है। लारे लारे जिंक सल्फेट रा गोल में ने पतली कास्टिक रो गोल मिलावा पे अगर सफेद मटमेलो मांड जसो अगर अवशेष वणे तो अणि में गाढ़ो कास्टिक रो अगर गोल मिलेगा तो अवशेष पूर्णतया घुल जावे तो यह असली जिंक सल्फेट री पहचान है सर।
4: बिल्कुल किसान भाई, और जेटा असली पोटास की पहचान की बात करें तो पोटास की असली पहचान है अंडो सफेद जो कनक, अब मैं आप देखा कि अड़में नमक और लाल मिर्च जैसो मिश्रण पोटास से कुछ जना में नमक करनो है तो यदि आपस में नहीं चिपके तो समझ लेनो ये असली पोटास है। पोटास पानी में गुलवा होते अंडो लाल भाग पानी रो उपरे तेरे तो भी आप पहचान कर सका कि यो सही रूप में असली पोटास है सा।
3: तो या तो किसान भाइया ने बताई कि किसान भाई असली और नकली खाद में ने जो जो भी खाद किसान भाई उपयोग में ले रहा है, चाहे DAP उपयोग में ले, यूरिया ले, सुपर फास्फेट ले, जिंक सल्फेट ले, पोटाश ले, अनारी सबरी असली और नकली में ने किसान भाई किस तरह जांच कर सके, पहचान कर सके, क्योंकि सही पहचान वेगा तो सही उत्पादन वेगा, और सही उत्पादन वेगा तो किसान भाई जो है वनारे अगर हाउ आमदनी वेगा, और आमदनी अगर हाउ वेगा तो किसान भाई अरे चारी मेर खुशियाली वेगा, और भी किसान भाई अरे खुशी ने दुगुनी करा और हुनावा प्यारो सो मनभावन राजस्थानी गीत।
4: बिल्कुल हुनासा।

0: તો રામાભાઈ કિસાન ભાઈને બડો હી પ્યારો સો મનભાવન રાજસ્થાની ગીત હુણાયો સા જાનકારી અભી કરાઈ મંગલા પશુ બીમા યોજનાની જાનકારી કરાઈ જટે કૃષિ વાનિકીરા કઈ કઈ ફાયદા હે વંડી જાનકારી કરાઈ ઓર અભે ઘડી રી તરફ નાલા તો કાર્યક્રમો વિદારો ટેમ વેઈ ગયો સા ચાલા સા રામ રામ સા
1: कार्यक्रम कृषि जगत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिकारियों से अपील की कि पूर्ण उन्मूलन के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
3: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक

0: के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के साथ पुनः लौटेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।

मुझे मेरे 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बज चुके हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद यह संध्या वेला मन को शांति, नई ऊर्जा, सकारात्मक विचारों से भरने का संदेश देती है। इसी भावना के साथ हमारी सांध्यकालीन सभा में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप सुनेंगे प्रेरणादायक विचार, मधुर संदेश और जीवन मूल्यों से जुड़ी बातें। तो आइए कुछ पल अपने मन को शांत करते हैं और अच्छे विचारों को अपनाते हैं और आने वाले कल में नई प्रेरणा सजाते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो रही है सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 के आयोजन का सीधा प्रसारण, जिसको हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: या प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस दिस योजना दैट इज द विकसित भारत Rozgar Yojana by the Prime Minister, and then after that he'll be coming over here in, say, in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगी श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। व्हाट अ एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, एंड देन द transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through

0: that is forgetting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो उसमें आती है.
0: पीपल विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट let the, this prime minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no, rozgar ya karobar साथ है
1: भारत सरकार जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी.
0: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स. The first part is support for the first time employees, jinko pehli bar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments, using Aadhaar verification. First installment, after 6 months of continuous duty, of 7,500 rupees. And the second one, after another 6 months, so after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल सभी को फायदा है. बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं. और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को

0: युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
1: The Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service NCS is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना.
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: एटमोस्फियर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी. यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे

0: Exactly.
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2,400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है.
1: yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए.
1: yes.
0: तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोर जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स. दैट इज व्हाट इट सेज नो. The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा.
1: yes,
0: ये बहुत yes. जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना. जी.
1: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
1: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे आर ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट द लेटर.
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में

0: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके, और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a Universal Account Number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे, और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर इज गिवन दिस जॉब टू मी. So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up, and I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive, and once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address, and then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen, and then after that he'll be clicking on the button, the magic button.
0: Magic button.
1: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech, because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी, और ये बहुत जरूरी भी होता है अतिरिक्त रोजगार सृजित करने

0: वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रूपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र है जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
1: And see the dais. How many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the plenary hall and the dais. Just behind the dais, there's a beautiful board, and on that, the Prime Minister. The Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his role as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं.
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry. If you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something. You've got a future. Every person has a plan. A talent. God has given a talent in you. And he will see that it, you come up in your life. So he said that low marks will not, it's not an end to anything. So you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
1: Yes,
0: तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, And even the

0: माय भारत वॉलंटियर्स आप सभी का
1: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the desk.
0: प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
1: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
2: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
3: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
2: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
3: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
0: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दें.
1: And now the welcome remarks by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit Adaniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है. नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है. और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था. लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है. आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी. उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा. पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी. दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा. वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है. देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है. महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है. जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था. 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है. 12 साल

0: साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया

0: सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
1: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
2: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
3: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
4: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
3: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रूपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रूपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रूपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
5: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
6: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
1: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
7: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का। भारत

0: युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
1: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
1: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
0: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
1: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
0: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में

भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है। और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना। और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे,

मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों,

ही नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों,

रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर

टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में

मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्प के नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत के

0: उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: The full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dream is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है।
5: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से विशेष कार्यक्रम, ये आकाशवाणी उदयपुर है।
6: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नए रोजगार सृजित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, साथ ही व्यवस्था में भी कई बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलती है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से पिछले एक दशक में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है।
0: ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
6: प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। वहीं देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर

0: क्षेत्रीय कार्यक्रम हुए। प्रदेश में ये कार्यक्रम जयपुर सहित जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। जयपुर के सीतापुरा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसमें अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का उपयुक्त साधन बनाया जाए। आज नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का जिक्र किया। श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में बहुत मदद की है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब व्यापक डेटा लगातार उत्पन्न किया जाए।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के तहत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। ये उपलब्धि युवा जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत और देशभर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विधानसभा परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम योगोत्सव का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में हुए इस योगाभ्यास में विधायक, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रदान करता है, साथ ही शारीरिक समन्वय, मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
2: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं। और योग से एक नई ऊर्जा का भी संचरण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनंदिन जीवन का अंग बनाएं, ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सके।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। राज्य में अन्य स्थानों पर हो रहे योग कार्यक्रमों के तहत आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद संस्थान की ओर से हवा महल तक योगा रैली निकाली गई। इसमें संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उधर पाली में आयुर्वेद विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास करवाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज से अगले महीने की 5 तारीख तक के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। इस अवधि में राज्य सरकार के विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थान

0: स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध पर फिलहाल यथावत रहेगा। इसके साथ ही वर्षा काल में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर भी स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों और पति पत्नी के मामलों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्य उन्नति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही अन्य कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में वरिष्ठ अधिकारियों ने युवा उद्यमियों से संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से भी संवाद किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और यहां के युवा एक से बढ़कर एक नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं।
1: राजस्थान में करीब 8,000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज हैं जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स तक हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज SI भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसमें 20,798 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जयपुर द्वारा समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी जाँच साक्षात्कार समय की जाएगी। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे वर्तमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। गौरतलब है कि 1,086 पदों के लिए ये लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की गई थी। जयपुर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर निगरानी और कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर शहर के 15 स्थानों पर लगे 47 कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने जैसे मामलों में नियमित ई चालान जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रोबेशन पीरियड वाले राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से भी राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में हर महीने 800 रुपए की कटौती की जाएगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय से कर्मचारियों को सेवा के प्रारंभिक चरण से ही सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण उपलब्ध हो सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योग के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और RPSC ने SI भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख राजेश।

0: सोनी ने तैयार किया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कुशलगढ़ पंचायत समिति की बड़वास, छोटी, निशानावट और टिमेड़ा बड़ा ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में बांसवाड़ा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली चंद्रपोल गेट से शुरू हुई। जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा और आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश दत्त पांडे ने रैली को रवाना किया। इसमें स्काउट और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार भाबूर ने तलवाड़ा ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने चित्रा डूंगरी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और एएनएम आशा सहयोगिनियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और सभी पात्र लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र बांसवाड़ा में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत और समाजसेवी पूंजीलाल गायरी ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। जिला कलेक्टर ने छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर हैंडपंपों, टैंकरों और जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी ली। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम होने से समस्या सामने आई है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। खराब हैंडपंपों की मरम्मत भी कराई गई है। जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नारी चौपाल लगाई गई। कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी महिलाओं को सहायता राशि के चेक बांटे गए। बांसवाड़ा में युवा संबल मेले का आयोजन भी किया गया। इसमें जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से आए 812 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 431 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, जबकि 174 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि विभाग ने आत्मा प्रशिक्षण हॉल में प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित की। किसानों को प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी दी गई। इसके अलावा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी प्राकृतिक खेती विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रगतिशील किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग लिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जिले में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने लोगों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले की 9 पंचायत समितियों में चित्रकला, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इनमें लगभग 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जनजातीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में 6 जून से 26 जून तक आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के 262 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें 120 बालिकाएं और 142 बालक शामिल हैं। खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, खो खो और फुटबॉल, हैंडबॉल तथा बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो नौजवाना और उद्योगों ने एक सागे आगे बढ़वाऊं नौकरी धंधारा मौका बनबारी गति बधैला। पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला।

0: 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई। थर्ड ग्रेड अध्यापक रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। और आरपीएससी एसआई भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हमारा राज माए नौकरी धंधा रा नुआ मौका बनावन सारू कई योजनावां चलाईची है और व्यवस्था माए जरूरी बदलाव करीचिया है। प्रधानमंत्री पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत आज करीब 2,400 करोड़ रुपया री रकम जारी कीनी। ई मौके श्री मोदी कहो कि नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बढ़वाऊ नौकरी धंधा रा मौका बधे है। वे केंद्र सरकार का न्यू लाडला 10 साल माए चलाई जी न्यारी न्यारी योजनावां रो जिक्र करता था का कहो कि ए योजनावां मोटी तादाद माए नौकरी धंधा रा मौका बनाया। प्रधानमंत्री कहो कि आ योजना नौजवाना और उद्योगों बीच मजबूत पुल रो काम कर रही है।
1: ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
0: प्रधानमंत्री नौजवाना सागे बातचीत कीनी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा समेत आखा देश माए 200 ठोड़ा क्षेत्रीय कार्यक्रम ही राखी चिया। जयपुर माए फिर राज्य स्तर रा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त काल जारी करी जावेला। इन जरिए 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपये बत्ती रकम भेजी जावेला। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई ई कार्यक्रम सारू तैयारियां चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किश्ता माए कुल 6,000 रुपया री माली मदद दी जावे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानूनी प्रक्रिया रा हर दौर माए प्रौद्योगिकी ने असरदार तरीकों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दिनो है। वे आज नई दिल्ली में 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में बोल रहा है। गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली रो जिक्र करता था का कहो कि आपराधिक न्याय प्रणाली ने देश रा हर रहवासी ने संविधान में दिया जया हक हासिल करण रो उपयुक्त जरियो बनावन रो भगत आग्यो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली कई मुश्किल मामला नई आसान बनावन में घनी मदद कीनी है। गृहमंत्री कहो कि फिलहाल इरा बूतारो केवल 10% ही काम लियो जा रियो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली अपराधियां रे पिछाण करण माए घनी असरदार है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में आज विधानसभा परिसर में योग कार्यक्रम रखी चियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में करी जाए ई योगाभ्यास में विधायक, विधानसभा सचिवालय रा अहलकार और कर्मचारी शामिल फिया। ई मौके देवनानी कहो कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन रो नजरियो बतावे है। वह सगलाऊ योग ने रोजमर्रा रो हिस्सो बनावन री अरज कीनी।
3: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं और योग से एक नई ऊर्जा का भी संचारण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनंदिन जीवन का अंग बनाएं ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सके।
0: मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा ही

0: आज मारा रहवास में थे विश्व योगासन चैंपियनशिप में तमगा जीतने वाला सागे योगाभ्यास किन्नो इसागे राज्य में चल रहा योग कार्यक्रम तहत जयपुर रा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली निकाली ची ये पाछा संस्थान रा शिक्षकां र विद्यार्थियां री ओरों हवा महल ताई योग रैली निकाली ची पाली माए आयुर्वेद विभाग री ओरों सामूहिक योगाभ्यास करवाई चियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके भारतीय वायुसेना देशभर माए योग सत्र राखेला। रक्षा मंत्रालय रे मुजब वायुसेना रा कर्मचारी वाना परिवार वाला सागे योग सत्र माए शामिल भेला। मासागे स्कूली बच्चा और एनसीसी कैडेटी आखा देश माए न्यारा न्यारा वायुसेना टेसना माथे रख्या जावन वाला योग सत्र माए शिरकत करेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार सरकारी अहलकारा और कर्मचारियों का तबादला माथे रोक फिलहाल हटा देनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग री ओर जारी हुक्म रे मुजब 5 जुलाई ताई तबादला करया जा सकेला। हालांकि शिक्षा विभाग रा थर्ड ग्रेड अध्यापका रा तबादला फिलहाल नहीं करया जावेला। इस आगे चौमासा माए बीमारियां रा पसारा री शंका न ध्यान राखता थका चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। हुक्म रे मुजब घना मंदा कर्मचारियां और लोग लुगाई रा मामला माथे खास ध्यान दियो जावेला। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रा अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह नवाचार और उद्यमिता हलकाओं जुड़िया खास लोगों सागे आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नो हब में बातचीत कीनी। इन दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम रा विकास मौका और चुनौतियां रे बारे में चर्चा करी ची। कार्यक्रम में श्री सिंह सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष मुद्दा माथे चर्चा करता थका कहो के राजस्थान नवाचार और उद्यमिता ने बढ़ावो देवन माए खास काम कीनो है। वह स्टार्टअप इकोसिस्टम रो फायदो मोटा शहरा सागे दूर राजिना और समुदायों ताई पुगावन माथे जोर तीनो। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था श्री सिंह कहो के प्रदेश माए 8000 बत्ता स्टार्टअप है और नौजवान नुवी नुवी जुगत लगा रहा है। वह कहो के स्टार्टअप रा मामला माए राजस्थान देश रा अगाड़ी राज्य माए शामिल है।
1: राजस्थान में करीब 8000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज हैं जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग आज SI भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो। आयोग रा सचिव राम न्यास मेहता बतायो कि 20,798 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू पास करी चिया है। पास हुआ उम्मीदवारा ने शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू जानकारी देती जावेला। आ उम्मीदवारा री पात्रता संबंधी जांच इंटरव्यू री भगत करी जावेला। ध्यान जोग है कि 1086 ओहदा माथे भर्ती सारू आ लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 न लीरी जी ही। जयपुर पुलिस यातायात नियम तोड़बा वाला ने खिलाफ निगरानी और कार्रवाई और कड़ी कर दीनी है। शहर में 15 ठोड़ा लगाई जिया 47 कैमरा रे जरिए वाहन चलावन वाला माथे ऑनलाइन तरीका निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस रा उपायुक्त योगेश गोयल बतायो कि तेज गति वाहन चलावण और लाल बत्ती पार करण वाला रे खिलाफ लगातार ई चालान जारी करिया जा रहा है। राज्य में प्रोबेशन पीरियड वाला सरकारी कर्मचारियां ने राज्य बीमा योजना रो फायदो दियो जावेला। बीमार प्रावधायी निधि विभाग का न्यू मिली जानकारी रे मुजब आ कर्मचारियां ने तनख्वाह हुई राज्य बीमा प्रीमियम रा तौरों हर महीना 800 रुपया री कटौती करी जावेला। आ व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 लागू मानी जावेला। रेलवे जोधपुर चेन्नई बीच हर सप्ताह खास रेलगाड़ी चलावन रो फैसलो किन्नो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो कि आ गाड़ी 27 जून नु 25 जुलाई ताई हर थावर न जोधपुर रवाना वेर सोमवार सिंजा चेन्नई पुगेला। वापसी माए आ गाड़ी 30 जून नु 28 जुलाई ताई हर मंगलवार न चेन्नई रवाना भैर गुरुवार ने जोधपुर पुग

0: पहला आगाड़ी जयपुर सवाई माधोपुर भोपाल नागपुर और विजयवाड़ा समेत कई खास स्टेशन माथे रुकेला। राज्य में अब अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा विद्यार्थियों सारू छात्रवृत्ति री योजना तहत अर्जी देती वगत निवास प्रमाण पत्र देवन री जरूरत नहीं रहेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रे मुजब इन फैसला रो मकसद विद्यार्थियों सारू अर्जी देवन री प्रक्रिया ने आसान बनावनु है। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग रा उम्मीदवार सारू प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनावां रो हर साल करीब 1,20,00,000 विद्यार्थियों ने फायदो मिले है। हाल ताई वजीफा सारू निवास प्रमाण पत्र जमा कराउनो जरूरी हो। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बढ़वाऊ नौकरी धंधा रा मौका बनवारी गति बधेला। पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला। 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई। थर्ड ग्रेड अध्यापकों रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। आरपीएससी एसआई भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर के केंद्र है। इस समय संध्या के 7:02 हो चुके हैं। आपसे कुछ ही पलों में किसान परिवार सुनेंगे अपना चहेता कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम रामा भाई, राम राम
1: राम राम गायत्री भाई सा, राम राम
0: खेती और घर कार्यक्रम हुणवा वाला सगला किसान भाई बेना ने आपनो
1: राम राम
0: सा। कार्यक्रम रो टेम वियो किसान भाई रे वास्ते भांत भांतरी जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन हाजिर व्यहा सा और किसान भाई रे वास्ते नरी हरी जानकारियां योजना और दिवस रे बारे में जानकारी करावांगा। और रामा भाई आप चौपाल री बात में कई लेन आया हो सा?
1: बिल्कुल सर, देखो चौपाल की बात में करांगा कि जो कुष्मांड कुल री सब्जियां हैं वे कसी कसी है, और देखो अन्य समय में देखो कीट नियंत्रण है वो किस तरह आपने ध्यान रखना है। तो आप ही सब जाना देखो कि कुष्मांड कुल री सब्जियां में जो कद्दू वर्गी सब्जियां नाम भी जानो जावे, अड़ में देखो कि कुल में लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, करेला है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, यानी जे भी पानी वाली जो आप कह सकें सब्जियां वे है। और अनमें आप ही देखा कि जो कद्दू वर्गी सब्जियां हैं सबसे पहला अनमें देखा कि विटामिन ए, सी, कैल्शियम और आयरन प्रमुख रूप रा स्रोत अनमें पाया जावे। तो देखो अनमें कई प्रकार की जो सब्जियां हैं उनमें कई प्रकार का कीट है, तो वनडे नियंत्रण वाता भी कई कर सका सा।
0: बिल्कुल सा, कुष्मांड कुलरी जो सब्जियां है अनमें ने कीट नियंत्रण करनो है और नरे हारा कीट जो है अने साग सब्जियां ने प्रभावित करे है। जनमें ने लाल मकड़ी यानी अंडी जो शिशु और वयस्क जो वे दोई अवस्था रूकड़ा ने बहुत ही हानि पहुंचावे है। ये मकड़ी जो है पत्यारी निचली सतह पे लागे रस चूसने वना ने नुकसान पहुंचावे, अणु पत्या पे सफेद धब्बा पड़ जावे, वे भूरा रंगरा वे जावे और वना ने रेशमी जालों पत्या ने वे ढांक देवे और हवारे चालवो जमीन मिट्टी का कण जाला पे लागन वंडे सघन वणई देवे। अणी वास्ते वे पत्तिया जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वणा में नी वे पावे और जणु वे प्रभावित वे पत्तिया पड़ी जावे और फूल और फल जो है वे दोई बहुत ही कम लागे और उत्पादन में ने भारी कमी आई जावे। तो अणी लाल मकड़ी झंडे बरू थी भी कहवा अंडे नियंत्रण रे वास्ते इथियान 50 EC 0.6 mL प्रति लीटर पानी की दर में गोल बनावनो है और वंडे छिड़काव करना है ऐसा।
1: बिल्कुल किसान भाई, और देखो एक है फल मक्खी। आप ही देखा कि प्रौढ़ और लड़ दोई अवस्था में पौधा ने नुकसान पहुंचावे। प्रौढ़ मक्खी आपने कही जो अंड निक्षेपक जिन्हें आप ही ओविपोजिटर भी कह सका, वंडी मदद तो कही कि फलारे छेद में और गुद्दा में अंडा दे दे और बाहर आने छेद में आप देखा एक लसदार पदार्थ वापस बंद कर देवे। अंडा जो है वे 3-5 दिन में लट यानी मैग्नेट्स निकलने फलारे अंदर ही अंदर खाता रहे। जड़ में आपने बाणु तो नहीं लागे कि बाणु सही है लेकिन अंदर पूरा फल है वो खराब हो जाओ कतरी बार फल गिर जावे। तो देखो अंडे नियंत्रण वास्ते आप ये कर सका कि

0: जो काटने वाला फल ने तोड़ने भूमि में गहरे गाड़े नष्ट करना है। अंडे अलावा मेलाथियन 50 cc या डाइमिथियोएट 30 cc 1 लीटर प्रति लीटर पानी की दर में घोल बनाई ने छिड़काव कर सका सा।
1: लाल रंग केटरी जटे बात करा तो लट और लाल रंग जो है दो ही अवस्था रूखड़ा ने बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचावे, और यो जो रंग है यो रूखड़ा री पत्तिया री शिरारे वचरे भाग ने खैन वड़ा ने छोटा छोटा छेद कर देवे, और अणे कीटरो जो प्रकोप है वो बसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा वेवे, और अंडी जो सुंडिया है वे जमीन रे महीने रेवे और रूखड़ा रे तना और जड़ा ने खाई लेवे। तो अणी लाल रंग रे नियंत्रण रे वास्ते एसीफेट 75 SP आधो ग्राम प्रति लीटर पानी री दलू घोल बनावणो है और छिड़काव करनो, और 15 दिन रे अंतराल पे पुनः वणी घोल रो पाछो छिड़काव करनो है।
0: बिल्कुल किसान भाई। और देखो कुष्मांडुली सब्जियां में समन्वित कीट प्रबंधन आप किस तरह कर सका, देखो मंडे बारे में भी बात करूंगा, लेकिन कार्यक्रम में देखो किसान भाई रो मनोरंजन भी करावा और होनावा राजस्थानी लोकगीत।

0: तो रामा भाई घणो ही प्यारो सो मनभावन राजस्थानी गीत किसान भाइया ने हुणायो सा। और जटे आपा बात कर रहा कि कुष्मांड कुलरी जो साग सब्जियां है वन में किसान भाई कीट रो नियंत्रण किस तरह कर सके और समन्वित कीट प्रबंधन करनो भी कुष्मांड कुलरी साग सब्जियां जिस तरह की लौकी करेला कद्दू अणा मैंने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गर्मियां मैंने समन्वित कीट प्रबंधन करवाने वास्ते गर्मियां में खेत री 2-3 बार गहरी जुताई करनी है, फसल चक्र और संतुलित उर्वरक जो है वंडो उपयोग करनो है। अणा सब्जियां री बुवाई समय पहला अक्टूबर नवंबर महीने करनी है तो लाल भृंग रो जो प्रकोप है वो कम वेगा सा।
1: बिल्कुल किसान भाई, और देखो कि फसल री प्रारंभिक अवस्था में समय समय पे निराई गुड़ाई भी करनी है। लाल भृंग री जो अवयस्क अवस्था है और फल मक्खी री जो शंकु है या प्यूपा है उन पे भी नियंत्रण करना जरूरी है। कते बार अभी देखा कि राख रो भुरकाव भी करा तो लाल भृंग रो आक्रमण है वो कम हो जावे। फल मक्खी और सफ़ेद मक्खी री अभी देखा कि मॉनिटरिंग वाते क्रमशः जो मिथाइल है, यूजेनाइल है, पॉस है या चिपचिपी पॉस रो भी प्रयोग अभी कर सका सा।
0: अप्रैल और जुलाई महीना में ने वयस्क मक्खियारी रोकथाम रे वास्ते जहरीलो पानी मिल्यो लोगों गोल वणेन खेत में जगह जगह पे रख देनो है। अंडे वास्ते 500 ग्राम गुड़ महीने 2 लीटर पानी में गोल वणानो है और वन महीने मेलाथियान 50 EC 20 ml दवा मिलानी है और मिट्टी का प्याला में 50 ml गोल प्रति प्याला में डाल अणि कीट ने आकर्षित कर नष्ट कर देनो है सा।
1: बिल्कुल किसान भाई, और फल मक्खी रे ग्रसित फल में आप देखा कि इकट्ठा करने गड्ढा में दबा देना, जनो वे ज़्यादा नहीं पनप सके और जीवन चक्र नहीं चल सके, और जीवन चक्र नहीं चलेगा तो देखो जे भी अगली फसल है हमने भी नुकसान हो अभी बचाऊंगा। मकड़ी ने नियंत्रण वास्ते आप कर सका कि जो प्रॉपर जाइट है 57 EC 1 ml दवा प्रति लीटर अथवा डाइकोफोल 18.5 EC 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सका सा।
0: कीटारी संख्या ने आर्थिक हानि स्तर तक पहुंचवा पहला कीटनाशी प्रबंधन का जतरा भी मौजूद तरीका और उपाय है, वणा ने सुसंगत और समन्वित रूप अपनाई नाशी कीटारी रोकथाम करवा, कीटनाशक रा जो भी दुष्प्रभाव है वणा ने वातावरण नु दूषित व्यवहार बचायो जा सके। तो किसान भाइया ने अगर कुष्मांड कुलरी साग सब्जी में अगर कणी भी तरीका रो कोई भी कीट लाग रो है तो वंडे नियंत्रण रे वास्ते अणी तरीका ने अपनानो है सा।
1: बिल्कुल किसान भाई, और देखो वाचिता चलती रहेगी है, और देखो किसान भैरों मनोरंजन भी करावा और हुनावा यो पैरों से राजस्थानी लोकगीत।

0: तो रामा भाई, किसान भैया ने प्यारो सो राजस्थानी गीत हुनायो सा कार्यक्रम में आगे बढ़ावा और किसान भैया ने जानकारी करावा कि कौशल विकास और ग्राम आत्मनिर्भरता किसान भाई किस तरह कर सके, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत रो सपनो जदि साकार वे सके, जदि अपना गांव जो है वे आत्मनिर्भर बने और गांवा ने आत्मनिर्भर बनावा में कौशल विकास रो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है सर।
1: बिल्कुल साहब। और कौशल विकास और अर्थ है लोगारी ऐसी व्यावहारिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना जो रोजगार प्राप्त कर सके, वे स्वयं रो व्यवसाय शुरू कर सके। जनन आप ही देखा कि जो ग्रामीण युवा है, महिला है, किसान है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण के आधार पर वे खुद अपनी प्रतिभा ने उकेरे और खुद आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर ने वहाँ बेहतर रोजगार अवसर भी मिल सके है ऐसा।
0: ग्रामीण क्षेत्र में ने किसान भाई खेतीबाड़ी भी करे, पशुपालन भी करे, डेयरी उद्योग भी चले सके, मधुमक्खी पालन भी कर सके, मशरूम रो उत्पादन भी कर सके, खाद्य प्रसंस्करण है, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा है, मोबाइल रिपेयरिंग है, हस्तशिल्प जिस जैसा अलग अलग क्षेत्र है जिनमें ने कौशल प्रशिक्षण प्रदान कियो जा सके और अणु लोगारी स्थानीय स्तर पे रोजगार रो अवसर मिलेगा और वणा ने शहरारी और पलायन भी नहीं करना पड़ेगा और वे सब ये अतरा छोटा छोटा और अणा ने बड़ो भी बड़ा स्तर पे भी ये उद्योग शुरू कर सके और अणा रो पहला प्रशिक्षण ले सके और वे प्रशिक्षण लेन कौशल रो विकास कर आत्मनिर्भर बन सके।
1: बिल्कुल किसान भाई। और देखा कि गायत्री वैसा कौशल विकास केवल पुरुष बातें नहीं है, कौशल विकास से महिला भी सशक्तिकरण भी सके उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और अभी हर क्षेत्र में देखा कि जो महिला खुद आत्मनिर्भर बन रही है, देखो कि स्वयं सहायता समूह है, वनडे माध्यमों महिला विभिन्न प्रकार जो लघु उद्योग है वे घर अड़े बड़े स्थापित कर रही है, घर परिवार जितना सदस्य वे सब उनमें लागने काम कर रहा है। और देखो वे पारिवारिक आय में आर्थिक रूप योगदान भी दे रहा है, जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मजबूत हो रही है सर।
0: कौशल विकास ग्रामीण युवा में भी आत्मविश्वास अणु बढ़े है। ग्रामीण युवा जो है अलग अलग तरीका रा कौशल विकास सीखे है, वे नौकरी खोजवा वाला नहीं बल्कि रोजगार देवा वाला भी बनी सके है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और अलग अलग राज्य सरकारारी जो योजना है वे युवा ने प्रशिक्षण दे रहा है, रोजगार रा अवसर उपलब्ध कराई रहा है, तो युवा भी कौशल विकास ने अपने आत्मनिर्भर बनी सके सर।
1: बिल्कुल किसान भाई। और यदि गांव में देखो कि रोजगार अवसर बनेगा, स्वरोजगार मिलेगा तो व्यक्ति शहरारी और पलायन नहीं करेगा। और आप ही देखा कि अणु गांवरी अर्थव्यवस्था है वह भी मजबूत होगा, लोगारे आय स्तर बढ़ेगा, वनारे जीवन स्तर में सुधार आएगा, वना में जो जो क्वालिटी एजुकेशन कह सकें गुणात्मक शिक्षा वर्णन भी बढ़ावा मिलेगा। और गांव में आप ही देखेंगे कि समग्र विकास होगा तो निश्चित रूप हर व्यक्ति गांव में आत्मनिर्भर बनेगा और एक नई दिशा और दशा पहचान बन सकेगा सा।
0: कौशल विकास केवल रोजगार रो साधन नहीं है बल्कि यो एक ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत री नींव है। अगर जतरा भी ये ग्रामीण युवा है, अपने जो ग्रामीण बहना है, अपना किसान भाई है, वे कणी न कणी तरीका रा कौशल में प्रशिक्षित वे जाएगा तो अपनो गांव, अपनो समाज और अपनो जो देश है वो तेजी विकास री और अग्रसर वेगा सा। तो या तो आपा किसान भाइया ने जानकारी कराई है कि कौशल विकास हो किसान भाई किस तरह ग्राम जो आत्मनिर्भर है वे किस तरह बनी सके। अबे आपा किसान भाइया ने पाछा मनोरंजन की दुनिया में ले चला और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल हुणावा।

अभी किसान परिवार सुन रहे थे अपना चहेता कार्यक्रम खेती और घर। ये आकाशवाणी उदयपुर है। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में, हमारे फिल्म संगीत कार्यक्रम में।

कहते हैं कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ता है तो आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों से सजने लगता है। तब दिल भी कुछ खास महसूस करने लगता है। शाम अपने साथ यादों की खुशबू और अपनों का इंतजार और प्यार के अनगिनत एहसास लेकर आती है। ऐसे ही एक प्यारी शाम का चित्र खींचता है कि सदाबहार गीत आजा शाम होने आई। यह गीत 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया का है, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और संगीत से सजाया है इसको राम लक्ष्मण ने और इस गीत के बोल कहे देव पोली ने। तो यह गीत युवा प्रेम की मासूमियत और मिलन की प्रतीक्षा को खूबसूरती से व्यक्त करता है। तो आइए इस सुहानी शाम को और भी खुशनुमा करते हैं और सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये मधुर गीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कहते हैं कि कभी कभी दिल की बातें शब्दों में नहीं बल्कि एक धीमी सी पुकार में छुपी होती है। जब कोई अपने प्रिय से कहता है कि सुन जरा, तो उसमें प्यार भी होता है, अपना भन भी होता है और दिल की अनकही भावनाएं भी। तो पेश है फिल्म लकी फिल्म का ये खूबसूरत गीत, और इस गीत को मधुर आवाज दी है सोनू निगम, संगीत दिया है अदनान स्वामी ने, और इस गीत में प्रेम की कोमल भावनाओं और दिल की सच्ची बातों को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। तो ये इस मधुर एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म लकी का ये गीत।

शोना बारी एक ऐसे गीत की जो प्रेम, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने के खूबसूरत वादे को बड़े ही भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत करता है। मधुर धुन, दिल को छू जाने वाले बोल और भावनाओं से भरपूर यह गीत आज भी श्रोताओं की पसंदीदा प्रस्तुतियों में शामिल है। तो आइए प्यार के इस अनमोल एहसास को महसूस करते हैं और सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

0: बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोता कहते हैं कि प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसमें तारीफ भी होती है, अपना पन भी होता है, एक दूसरे के लिए अनकहे जज्बात भी। जब दिल अपने प्रिय से पूछता है कि इतना प्यार क्यों सजना, तो जवाब शब्दों में नहीं एहसासों में मिलता है। तो पेश है फिल्म मृत्युदंड से ये गीत, और इस गीत को सुरीली आवाज से सजाया है उदित नारायण और कलका याग्निक ने। संगीत निर्देशन है आनंद मिलन का और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। यह गीत प्रेमी प्रेमिका के बीच की मीठी नोकझोंक, प्रेम पूर्ण संवाद को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। तो आइए प्यार के इस मधुर एहसास के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम

शुद्ध एफएम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर केंद्र से। कहते हैं कि जब प्यार पहली बार दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है तो हर एहसास नया सा लगता है। दुनिया पहले जैसी ही होती है लेकिन उसे देखने का नज़रिया बदल जाता है। दिल में उम्मीदें, आँखों में सपने और होठों पर मुस्कान सज जाती है। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं को बयां करता है फिल्म दिल है तुम्हारा से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने और संगीत दिया है नदीम शर्मा ने और इस गीत की धुन बनाई है समीर ने। तो ये सुनते हैं प्यार के इस खूबसूरत एहसास के साथ ये गीत।

श्रोता फैन से गीता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। कहते हैं कि प्रेम का एहसास जब दिल में गहराई से उतर जाता है तो मन हर पल उसी को उसी की ओर खींचने लगता है। फिर न दिन का पता चलता है न रात का, बस हर तरफ उसी का चेहरा उसी की यादें नजर आती हैं। ऐसी ही भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पिरोता है यह गीत। इस गीत को लिया है हैप्पी फिल्म से और इस में सुरीली आवाज़ है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के। संगीत यह है विशाल शेखर ने और गीत की बोल है इरशाद कामली के। तो आइए दिल के कोमल एहसासों को और प्रेम की मधुर अनुभूतियों के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

कहते हैं कि भारतीय फिल्मों के गीतों में प्यार, शरारत तो चुलबुलापन हमेशा खास आकर्षण रहे हैं। जब हवाओं के संग किसी का दुपट्टा लहराता है तो दिलों में हलचल मच जाती है। इसी मस्ती और रोमांच से भरपूर यह गीत, आइए सुनते हैं फिल्म मुझसे शादी करो की का ये गीत। और इस गीत में प्रेम की नटखट अदाओं युवा दिलों की धड़कनों को बड़े ही रंगीन अंदाज से प्रस्तुत किया है। तो आइए मुस्कान, मस्ती और प्यार के रंगों से सजे इस गीत का आनंद लेते हैं।

कहते हैं कि प्यार की खूबसूरती बड़े बड़े वादों से नहीं बल्कि साथ बिताए छोटे छोटे पलों में भी छुपी होती है। जब दो दिल एक दूसरे के साथ निभाने का वादा करते हैं तो हर पल यादगार बन जाता है। ऐसे खूबसूरत एहसास को बड़े चुलबुले मधुर अंदाज में पेश करता है ये गीत।

श्रोता फिल्म संगीत कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र है, रात्रि के 8:45 होने को कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या होगी और रात्रि 9 बजे का समय रहेगा। न्यूज़ 8:09 का।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक

0: सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

0: अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
1: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
6: दिस इज द कंट्री।
7: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों

0: की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability.

जो दिल को सुकून दे, जो मन को प्रसन्न करे, जो जीवन के सुंदर भावों को संगीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करे, वो है संगीत। संगीत वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी कुछ कह जाती है। जब सुरों में भावनाओं का संगम हो जाए तो वही बन जाता है सुगम संगीत, सरल, मधुर और मन को छूने वाला। तो किसी ने सच्ची कहा है कि सुरों में छिपी है जीवन की कहानी, गीतों में बसती है मन की रवानी।

माना कहते हैं कि जीवन में प्रेम, मित्रता, उम्मीद और विश्वास ऐसे अनेक रंग हैं जो संगीत इन सभी रंगों के शिविर में पीड़ों का रखते हैं। छोटी सी पंक्ति याद आ रही है कि दिल से निकले जो ध्वन बन कर सभी अमर हो जाते हैं।

कहते हैं कि हर गीत अपने साथ कोई न कोई याद, कोई एहसास, कोई कहानी लेकर आता है। शायद यही कारण है कि कुछ धुने वर्षों के बाद भी हमारे दिलों में उसी तरह बसती है।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। कहते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी संस्कृति की धरोहर का अमूल्य खजाना है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति, साधना और आध्यात्मिक चेतना का स्वरूप है। रागों और तालों की यह परंपरा सदियों से हमारे संगीत को समृद्ध करती आई हुई है। आज भी अपनी मधुरता से श्रोताओं के मन को स्पंदित करती है। आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषताओं पर गाना आपको सुनाएंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार राग है। प्रत्येक राग का अपना स्वभाव, समय और भाव होता है। कोई राग भोर की शीतलता को अनुभव कराता है तो कोई संध्या की गंभीरता को। तो आइए सुनते हैं राग।

श्रोता पे आप आनंद ले रहे थे शास्त्रीय संगीत का कि आकाशवाणी उदयपुर है। कहते हैं कि दिन भर की व्यस्तता के बाद जब रात अपनी शीतल चादर ओढ़ लेती है तो चारों ओर सन्नाटा गहराने लगता है। आसमान में चांद तारे अपनी मधुर आभा बिखेरते हैं, तब मन को सुकून देने वाले संगीत की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। वाणी के विशेष कार्यक्रम रात्रि कालीन संगीत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। शुद्ध रात की नीरवता में संगीत का आनंद कुछ और ही होता है। ऐसा लगता है मानो हर सुर सीधे हृदय तक पहुंच रहा है। चांदनी रात में सुर जब गुनगुनाते हैं तो मन के सुने कोने भी मुस्कुराने लगते हैं।

कहते हैं कि प्यार में नोकझोंक हो और थोड़ी शरारत हो तो ढेर सारा अपनापन हो तो रिश्तों का रंग और भी खूबसूरत हो जाता है। अब पेश है ऐसा ही चुलबुला और मस्ती भरा गीत, जिसमें एक पत्नी बड़े ही मज़ेदार अंदाज से अपने सजना को बता रही है कि अब घर में चलेगा उसका हुक्म।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते

0: का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं, अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कहते हैं कि कभी कभी दिल की बातें शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों में बयां होती हैं। जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो हर धड़कन एक नई कहानी कहने लगता है। ऐसा ही खूबसूरत एहसास लिए हुए हैं ये अगला गीत। यह गीत प्यार की मासूमियत, अपनापन और दिल की अनकही भावनाओं को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। मधुर संगीत और दिल को छू जाने वाले बोल इस गीत को हमेशा यादगार बना देते हैं। तो आइए प्यार की इन मीठी धड़कनों को महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

श्रोता कहते हैं कि पहली नज़र का प्यार एक एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। किसी की एक मुस्कान, किसी का एक नज़र, एक मुलाकात दिल की धड़कनों को नया अंदाज दे जाती है। अब पेश है ऐसा ही रोमांटिक गीत जिसमें पहली मुलाकात की मासूमियत, दिल की हलचल और प्यार की मीठी शुरुआत को बेहद खूबसूरती से पिरो गया है। तो अपनी यादों को ताज़ा कीजिए और इस प्यारे से नगमे का आनंद लीजिए।

बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि फिल्म संगीत का यह खूबसूरत सफर अभी जारी है। कहते हैं कि प्यार में कभी शरारत होती है तो कभी नटखट अंदाज, तो कभी मीठी सी छेड़छाड़। ऐसे ही हल्के पुलके रोमांस और मस्ती से सजा है हमारा अगला गीत। इस गीत में प्यार की मासूमताएं, दिल की धड़कनों का उत्साह और खूबसूरत संगीत का ऐसा संगम है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो देर किस बात की है, आइए सुनते हैं सुरीले और चुलबुले अंदाज का आनंद लेते हैं और सुनते हैं अपना अगला गीत।

ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हर पल को खास बना देती हैं। किसी अपने के साथ मिले तो हर मौसम सुहाने लगता है और हर सफ़र आसान। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को बहुत मधुर अंदाज में बयां करता है हमारा अगला गीत। प्यार, अपनापन और दिल की धड़कनों से सजा है ये अगला नगमा, आज के दौर में सबसे पसंदीदा रोमांटिक गीतों में शामिल है।

0: सुना कहते हैं कि जब मौसम में बहारों फूलों में खुशबू बिखरी हो तो दिल में प्यार का एहसास जाग उठा हो तो हर पल किसी खूबसूरत गीत जैसा लगने लगता है। तो हमारा अगला गीत भी इसी प्यार ताजगी और रोमांस के रंगों से सजा हो। मधुर संगीत, दिल को छू जाने वाले बोल और शानदार गायकी से सजा यह गीत बरसों से श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। तो यह गीत सुनते ही मन भी बहारों की तरह खेल उठता है। तो आइए प्यार और संगीत के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: क्या?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गलियों की निहार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: प्यार की झनक हो, कंगन की खनक हो, और दिल में प्यार की हल्की सी दस्तक हो, ऐसे ही प्यारे एहसासों से सजा है हमारा अगला गीत। इसकी मधुर धुन और चुलबुले बोल सुनते ही मन झूम उठता है। यह गीत प्यार, अपनापन और रिश्तों की खूबसूरत मिठास को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश करता है। अगर आपको रोमांटिक और मधुर गीत पसंद है तो यह नगमा निश्चित ही आपके दिल को छू जाएगा। तो आइए बिना किसी इंतजार के सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

कहते हैं कि आंखें अक्सर वो बात कह देती हैं जो लफ्ज़ों से कहना मुश्किल होता है, प्यार का इजहार हो या दिल की कोई अनकही बात, नजरें सब कुछ बयां कर देती।

है। हमारा अगला गीत भी इसी खूबसूरत एहसास को बेहद मधुर अंदाज में पेश करता है।

कहते हैं कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आंखों में बस जाते हैं और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिंदगी भर याद रहती हैं। जब प्यार अपने सबसे खूबसूरत रूप में सामने आता है तो हर पल किसी सुनहरे ख्वाब जैसा महसूस होता है। अब पेश है ऐसा ही सदाबहार गीत जिसमें अपनी मधुर धुन, खूबसूरत बोल और दिलकश प्रस्तुति से वर्षों से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बना रखी है। तो आइए सुनते हैं प्यार और ख्वाबों की इस हंसी।

हैं कि प्यार में मिलन जितना सुहाना होता है, कभी कभी दूरी इतनी ही बेचैन कर देती है। इंतजार के पल मिलने की चाह और दिल की बेकरारी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां करता है हमारा ये अगला गीत। अपनी चुलबुली धुन, यादगार संगीत और दिल को छू जाने वाले बोलों की वजह से यह गीत आज भी श्रोताओं की पसंद बना हुआ है।

श्रोताओं, रात्रिकालीन संगीत कार्यक्रम बस यहीं तक। आशा है कि सुरमई प्रस्तुतियों ने आपकी रात को और भी मधुर एवं सुकून भरा बना दिया होगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि संगीत की यह चांदनी यूं ही बिखरती रहे, आपके जीवन में खुशियों की धुन सदा गूंजती रहे।

श्रोता, रातकालीन समाचारों का अब समय हो चला है और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का और रात्रि 11:00 का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि

0: चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under